0: लाइका गोल्ड।
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड।
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
3: साउथ हॉल ट्रेवल
2: 0208574 8410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एज रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में। रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई। इवेंटिम अपोलो हैमरस्मिथ हमारे राम।
5: बुक योर टिकट्स नाउ ऑन eventimapollo.co.uk एंड यूज कोड हमारे राम 10 फॉर 10% डिस्काउंट ऑन ऑल शोज एंड टिकट।
4: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक का रेडियो।
6: क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: 02085748410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
4: No worries. I'm having fun on Play Ojo.
5: Keep it fun with Play Ojo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
3: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
4: Thanks. Playtime's over. Lovely.
6: Feel the fun. Play Ojo.
7: 18 plus, gamble aware.
8: Packed for the trip? Gifts? Passport?
9: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
8: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
9: Simzy?
8: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
10: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
0: बॉलीवुड के लेजेंड कलाकार सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

हुक्म लिख दुख सुख पाई है, एक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा भुआई है। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोए, नानक हुक्मे जे बुझे

सुनिए हाथ वैसगा, नानक भक्तां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नास। मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए।

मन कोय। मन्ने सुत होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की शुद्ध। मन्ने मोह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए। मन्ने मग ना चले पंथ, मन्ने धर्म से ती सनबंध।

पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोहन लिवलाए तार, कुदरत कौन कहा।

मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

ते तेरे भगत रसाले होर के ते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखे की ता अपना जिव तिस दी वडियाई जो तिस भावे सोई करसी हुक्म ना करना जाई सो पातशाह साहिब नानक रहन जाई।

नाद अनाहत जुग जुग एक ओवेश आसन लो लोय भंडार जो कुछ पाया सो एक वार कर कर वेखे सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एक ओवेश एक दूजी बो लख होवें लख होवें लखवीस लख

ए जोर ना जुगती छुटाए संसार, जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए। राती रुती चित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवान।

0: लाइका गोल्ड। travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: विजिट travelhubworld.com।
2: It's India versus Pakistan and this is India's lineup.
3: इस जून FIH हॉकी प्रो लीग लेकर आ रहा है स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी राइवलरी लंदन में। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान लाइव एट ली वैली हॉकी एंड टेनिस सेंटर। हाई स्पीड एक्शन, हाई इंटेंसिटी मोमेंट्स, बिल्कुल अनमिसेबल। अपनी टिकट्स अभी बुक करें एट englandhockey.co.uk। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान लंदन 23rd और 26th जून। बी देयर।
2: सो इंडिया लुकिंग टू प्रेस होम दैट एडवांटेज। देयर इज अ चांस।
4: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मगर, मगर, मगर

सुबह चैन आराम राति सुबह दोपहर और शाम छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं देखो ना दर्द ठेस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं।

0: Like a gold.
1: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
2: TravelHub, best service with unbeatable price.
1: At all protected.
2: Visit TravelHubWorld.com.
3: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए. दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाईलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
4: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 0203 773 633 नाउ. एप्टा बॉन्डेड. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 0203 963 5757. Greens by Danube. Prime location.
5: High appreciation.
6: In Dubai.
7: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
8: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
7: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
8: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
9: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208152025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
10: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
11: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
10: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
11: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
10: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
11: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
12: Your call is important to us. You are currently number 25 in the queue.
13: 25? Seriously?
12: Sounds like Ojo time.
13: Nice idea. Feel the fun with Play Ojo, the online casino with all the latest live casino and slot games. New players get 50 free spins on Big Bash Bonanza, plus instant payouts on winnings.
12: Sorry about the wait. How can I help?
13: You can help me celebrate. I won.
14: Feel the fun. Play Ojo.
13: First deposit only. Most wins are instant. 18+. Gamble aware. T's and C's apply.
15: Leica Radio Network. Proud hospitality partner. Ragasan. It's summer. On the Leica Radio Network.
16: Gold Breakfast with Kajal.

0: गुड मॉर्निंग। एक और मनोरंजन, एक और वीकेंड की शुरुआत गीतों के साथ, मनोरंजन की सौगात। माय नेम इज रवि शर्मा एंड आई विद यू टिल 1 o'clock दिस आफ्टरनून। स्वागत है आपका एंटरटेनमेंट की दुनिया में। थैंक्स टू काजल, शी विल बी बैक ऑन मंडे मॉर्निंग। और अब से लेकर भाई दोपहर बाद 1 बजे तक मैं हूं आपके साथ। शायरी से करूंगा शुरुआत और फिर उसके बाद एक के बाद एक ऐसा गीत जो आप कानों के रास्ते अपने दिल में उतारेंगे और हमेशा उसे छुपा कर बसा कर रखना चाहेंगे। देखो जहां को मेरी वफा पर ना हंसाना, देखो जहां को मेरी वफा पर ना हंसाना, रखो ना भले दिल में नजर से ना गिराना, अपने करीब मुझको भटकने ना दो भले, लेकिन मेरे ख्यालों से तुम दूर मत जाना। मैं हुक्म तेरा जानकर भी कैसे मान लूं, मुमकिन ही नहीं है मेरे लिए तुमको भुलाना, अब जाके मुझे और कोई प्यास नहीं है, शुक्राना है सजदे में मेरा सर को झुकाना। और सर को झुकाने का मतलब साहब, दिल तो पहले ही झुक चुका है।
1: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
3: TravelHub.
2: At all protected.
1: Leica. Classic Throwback is brought to you by Leica Gold 2. Bollywood classics non-stop on the new Leica Gold 2. Available at LeicaRadio.com, via Alexa, or by using our Leica Radio mobile app.
0: मैं हुक्म तेरा जानकर भी कैसे मान लूं, मुमकिन ही नहीं है मेरे लिए तुमको भुलाना, अब्बा की तुम्हें और कोई प्यास नहीं है, शुक्राना है सजदे में मेरा सर को झुकाना।

0: तो साहब बैक टू बैक संगीत के साथ हुई शुरुआत तो आज के मनोरंजन प्रोग्राम की, शुक्रवार वर्ष 2026 के जून महीने की 12 तारीख है भाई। 12 जून, और 12 जून के इतिहास में कुछ अच्छी बुरी बातें जुड़ी रहती हैं, जैसे हर एक दिन के साथ कुछ ना कुछ जुड़ा होता है। हाँ, आज तो भाई एक तो वो घटना जो हवाई हादसे वाली, अहमदाबाद से एयर इंडिया के हवाई जहाज़ ने उड़ान भरी और उड़ान भाई आसमान तक नहीं पहुंच पाई, बल्कि थोड़ी दूर उड़ान के तुरंत बाद हवाई अड्डे से कुछ ही गज की दूरी पर प्लेन गिरा। और आज एक बरस हो गया उस घटना को, लोग याद कर रहे हैं, याद कर रहे हैं उस हादसे को, याद कर रहे हैं उन मुसाफिरों को, और याद कर रहे हैं उस व्यक्ति को भी जो इकलौता उस भाई एक्सीडेंट में बच गया। जांच अब भी चल रही है, क्या कारण रहा होगा, क्यों ऐसा हुआ। हादसे होते हैं साहब, लेकिन जिंदगी फिर भी चलती रहती है। आज गंभीरतापूर्वक विचार हो रहा है हवाई यात्रा पर। ये घटना आज के दिन घटी थी, लेकिन कुछ बातें ऐसी बाद में भाई सामने आई कि 12 जून का दिन किसी व्यक्ति के लिए बहुत लक्की था और वो उनकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, उन्होंने जानबूझ करके ये डेट चुनी थी, छठा महीना 12वां दिन 12 जून का ये दिन भाई। और भी कुछ एक बातें जो है वर्कर सामने आई कि ये 12 जून का दिन, खैर साहब इससे और जुड़ी बात ही और इसके साथ जुड़ने वाले आज के प्रमुख समाचार हम 10:30 बजे आप तक पहुंचाएंगे। उससे पहले लेट्स सी आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रेट क्या चल रहा है रुपयों में, भारतीय करेंसी में।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with YONO SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI UK, State Bank of India UK, today they are giving for £1, how many rupees? कितने रुपए? 127.2, 127 रुपए और 20 पैसे का रेट चल रहा है भाई। अपनों को अगर आप भिजवाना चाहते हैं तो उनकी सेवाओं का फ़ायदा उठाइए, पर साथ में ये बात भी सुनते जाइए कि अगर आप £1,000 से ज़्यादा भेजते हैं तो एवरी डे देर आर चांस टू विन £75 वाउचर। यस, एंड इफ यू सेंड मोर देन £2,000 देर इज़ ए चांस टू विन 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। लेकिन ये पैसे भाई या तो आप योनो ऐप के माध्यम से या फिर SBI UK की किसी भी ब्रांच में जाकर के भिजवा सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: ये है Like a Gold.
3: Like a Gold.
1: Like a Radio. Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: जो साहब कैसी है आपकी दिलचस्पी फुटबॉल में? वर्ल्ड कप जो है वो शुरू हो चुका है कल, बड़ी शानदार शुरुआत रही, ओपनिंग सेरेमनी हुई और पहला मैच मेजबान टीम ने जीता। भाई ये मैक्सिको में, अमेरिका में और कनाडा में वर्ल्ड कप के मैचेस खेले जा रहे हैं, तो ओपनिंग और पहला मैच मैक्सिको में हुआ और मैक्सिको की टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो है 2-0 से ये मुकाबला, पहला मुकाबला अपने नाम किया। अब साहब जो भी कुछ होगा फुटबॉल जगत में, ये 19 जुलाई तक चलेंगे मैचेस, फाइनल 19 जुलाई को है, तब तक हम आपको जोड़े रखेंगे फुटबॉल से, नतीजों से, ग्राउंड से। और कल के मैच में कहते हैं भाई गोल तो कम हुए लेकिन रेड कार्ड ज़्यादा दिखाए गए, वेल ऐसी सब बातें यहाँ सुनने को मिलेंगी। सुनते रहिएगा लाइका रेडियो नेटवर्क।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: Yeah. Like.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. Like
3: लाइका रेडियो नेटवर्क, अब आप रवि शर्मा से आज की खास खास खबरें सुनिए। लोकल समाचारों में बेलफास्ट तो चर्चा में है ही, लेकिन मैसिव बॉडी ब्लो फॉर स्टार्मर एज टू मिनिस्टर्स रिजाइन इन डिफेंस स्पेंडिंग रूम। रक्षा मंत्रालय के खर्चों को भाई मुद्दा बनाकर के दो मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, तो स्टार्मर सरकार के लिए ये एक और खतरा उन पर मंडराने लगा है। ये यहाँ की बात, लेकिन भाई अंतर्राष्ट्रीय समाचारों पर नजर डालें तो शुरुआत करें भारत से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बात करते हुए धारा 370 की बिरयानी मामले पर कहा है कि मनोरंजन के नाम पर यदि कोई समाज की सीमाओं और मर्यादाओं का उल्लंघन करता है तो ये सही नहीं होगा। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सप्रेशन की आज़ादी सबको दी है, लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई इसका गलत इस्तेमाल करता है तो इसका दुरुपयोग ना हो, इस प्रकार की व्यवस्था भी उसी संविधान ने तैयार की है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि स्टैंड अप कॉमेडी सभी को पसंद है, लेकिन मैं खुद भी देखता हूं, उससे मनोरंजन तो होता है, लेकिन मनोरंजन करते करते अगर आप समाज की सीमाओं और मर्यादाओं की जो सीमाएं हैं उनका उल्लंघन करेंगे तो ये सहन नहीं किया जाएगा, ये लोगों के साथ अन्याय होगा। समझ रहे हैं आप भाई, अगर कोई स्टैंड अप कॉमेडी करता है और फिर कुछ इस तरह की बातें अपनी कॉमेडी में इस्तेमाल करता है जो किसी के दिल को ठेस पहुंचा सकती हैं, तो भाई वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। ये कह रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस हार गई और उसके बाद उसके कई नेताओं ने तो पार्टी छोड़ दी और ममता बनर्जी भाई थोड़ी सी अलग थलग पड़ती नजर आई, पर इसके साथ ही उसके नेताओं के साथ पब्लिक ने जो बर्ताव किया वो भी चर्चा में है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जगदीश वर्मा बसुनिया ने इल्जाम लगाया है कि टीएमसी के बड़े नेता घर से बाहर तक नहीं निकल पा रहे हैं। उन्होंने कहा दीदी यानी ममता बनर्जी और अभिषेक कौन घर से निकल पा रहा है, अभिषेक निकले तो उन पर अंडे फेंके गए, जो लोग घर से निकलते हैं उनका घेराव करते हैं, पब्लिक गंदे नारे लगाती है, इसलिए कौन आवाज उठाएगा। जब हमारे शीर्ष नेता यानी चोटी के नेता जो ऊपर की कैडर के लीडर्स हैं वही सुरक्षित नहीं है तो फिर हमें सुरक्षा कहां से मिलेगी। एयर इंडिया विमान हादसा, एक साल हो गया भाई उस हादसे को, जब अहमदाबाद से एयर इंडिया का वो प्लेन उड़ा था और उसके बाद कुछ ही मिनट्स में सेकंड्स में हादसे का शिकार हो गया था। उस एक्सीडेंट में बची अकेले जिंदा जो है सर्वाइवर विश्वास कुमार एक साल बाद भी किन चुनौतियों से जूझ रहे हैं वो खुद बता रहे हैं। अहमदाबाद एयर इंडिया हवाई हादसे के एक साल पूरा होने पर इस हादसे में जीवित बचे एकमात्र शख्स विश्वास कुमार रमेश ने कहा है कि आज भी वो बहुत सारे चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। वो कहते हैं कि लोग देखते हैं कि मैं बच गया हूँ, लेकिन वे हमेशा उन चुनौतियों का नहीं देख पाते जो बंद दरवाजों के पीछे बनी रहती हैं, जिनका मुझे सामना करना पड़ रहा है। मुझे अब भी नींद ना आने, एंग्जाइटी, मुश्किल यादों से जूझना पड़ता है। एक साल गुजरने के बाद भी मैं अपनी ज़िंदगी को फिर से संवारने और अपने परिवार की हर संभव मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिंदा रहने के लिए शुक्रगुजार हूँ, लेकिन जिंदा बचना काफ़ी नहीं है। इस कहानी का एक हिस्सा अभी भी मैं भुगत रहा हूं। पेट्रोलियम मिनिस्टर ने पेट्रोल पंपों पर किसी ग्राहक को एक दिन में 200 लीटर से ज्यादा हाई स्पीड डीजल बेचने पर रोक लगा दी है। भारत से आई ये खबर है, वहां ये हो रहा है। नए सरकारी आदेश के मुताबिक इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल यूजर्स को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने से रोक दिया गया है। उनसे कहा गया है कि वे अपनी जरूरत का ईंधन बल्क सेल पॉइंट से खरीदें। दिल्ली से खबर आ रही है, राजधानी दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके के तुगलकाबाद एक्सटेंशन में आज सुबह सुबह एक 5 मंजिला बिल्डिंग में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि हादसे में मारे गए लोगों में 22 साल का एक लड़का और दो महिलाएं शामिल हैं, जबकि दो अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस के मुताबिक आग लगने के बाद इमारत से धुएं के गुब्बार देखे गए, जिनमें फंसे 8 लोगों को निकालकर एम्स और सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इंटरनेशनल लेवल पर मशहूर शूटर जसपाल राणा का 49 साल की उम्र में निधन हो गया है। बड़े मशहूर शूटर होने के साथ ही वो भारत की ओलंपिक मेडल विजेता भनु भाकर के कोच भी थे। भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर उनकी मृत्यु के बारे में लिखा है कि उनके आकस्मिक निधन से मैं स्तब्ध हूँ, शोकाकुल हूँ, दुखी हूँ और एक उत्कृष्ट खिलाड़ी और कोच होने के साथ साथ वे अत्यंत सहज, सरल और बहुत ही नेक दिल इंसान थे, तो मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। ओमान कोस्ट के पास अमेरिका के हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत पर कांग्रेस पार्टी ने रिएक्ट किया है। भाई आप सुनते रहिए, कल की खबरों में एक जो है समुद्री जहाज पर अटैक हुआ और 3 भारतीय नाव चलाने वाले नाविक जो है वो उसमें शहीद हो गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ओमान के तट पर 3 भारतीय नाविकों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त कर रही है। कह रहे हैं राहुल गांधी, उन्होंने कहा कि हम उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना जाहिर करते हैं और मुश्किल समय में उनके साथ खड़े हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये भी कहना है कि अमेरिका की उन लापरवाह सैन्य कार्रवाइयों की भी कड़ी निंदा करते हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में आम नागरिकों के जहाजों और समुद्र कर्मियों की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। अमेरिका ईरान तनाव के बीच बीते 4 दिनों में भारतीय क्रू मेंबर्स वाले कम से कम 3 जहाजों पर अटैक हो चुका है। 8 जून को MT मारिवेक्स जहाज पर हमला हुआ था जिसमें 24 भारतीय नाविक सवार थे, हालांकि बाद में इन्हें सुरक्षित बचा लिया गया। ओमान स्थित भारत की एम्बेसी ने इसकी पुष्टि की है। ईरान का भी एक बयान आया है। ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन इस्माइल बाकाई ने खाड़ी इलाके में भारत के कमर्शियल जहाजों पर हुए हमले को लेकर अमेरिका पर निशाना साधा है। भारतीय कमर्शियल जहाजों पर अमेरिका के अटैक्स में कम से कम 3 भारतीय नागरिकों की मौत के बाद ईरान का कहना है कि ये हमले अमेरिका की हथियारबंद लूट और समुद्री डकैती की पॉलिसी का स्पष्ट सबूत हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ जंग खत्म करने के लिए एक शुरुआती समझौता जल्द ही हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से ईरान पर हमने हमले रोक दिए हैं। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि हमारे समझौते के मुताबिक ईरान के पास कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं होंगे और इसी मकसद को हासिल करने के लिए हमें इतनी मशक्कत करनी पड़ी थी, इसलिए बहुत बड़ी बात है। अब बहुत जल्द समझौते का प्रारूप जो है फाइनल रूप में सामने आने वाला है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
2: Like a gold. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
3: Very good morning. आइए अब लौट आइए संगीत की तरफ।

ये सुनकर बेचारा क्या झूमेगा, कोई खूबसूरत लड़की भाई आपको बाबा कहे क्या होगा, दिल टूटेगा ना। ये वही आवाज है, ये वो अंदाज भाई जिसने कभी गाया था कि दिल के अरमां आंसू में बह गए, सलमा आगा की आवाज। लेकिन ये झूम झूम झूम बाबा शब्द पे आपत्ति है भाई। लो जी, हमारे हितेश पटेल भाई गुजरात से संदेश भेज रहे हैं। क्या लिख रहे हैं बता रहे हैं कि मैं शादीशुदा हूं, मांग भरने की सजा कुछ इस तरह निभा रहा हूं, मांग पूरी करते करते मांग के खा रहा हूं। भुगतो भाई, शादी में दूल्हे को तलवार भी देते हैं, घोड़ी पे भी बिठाते हैं कि जान बचा के भाग सकता तो भाग जा, फिर भी कोई कहेगा कि भाई मुझे तो रिस्क लेना है तो लो भाई भुगतो।

0: तैयब अंकल, ये क्या कह रहे हैं आपके बारे में? शर्म करो थोड़ी बहुत, प्यार के दुश्मन, क्या टाइटल कमाया है।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: और लीजिए LemFi के रेट्स नोट कर लीजिए भाई, एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग इन इंडियन करेंसी 127.57 रुपीस, पाकिस्तानी 372.58, एक पाउंड के बदले श्रीलंकन रुपए 448.07, बांग्लादेशी टके 164.69, अफगानी 83.84 एंड केनियन शिलिंग्स 173.79।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Well, the Gold Rate, my gold jo hai niche aa gaya tha, 98 तक नीचे गिरा था और भी गिरने की संभावना तो थी, लेकिन अब थोड़ा सा ऊपर चला गया था। गोल्ड एट दिस मोमेंट इज ट्रेडिंग एट द रेट ऑफ 101.32 पाउंड्स पर ग्राम।
1: गोल्ड रेस वाज स्पॉन्सर्ड बाय पूजा स्वीट्स, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी वेजिटेरियन फूड सप्लायर्स, PoojaSweets.com और विजिटर्स एट ईस्टहैम, हाउंसलो और क्राउली।
3: तुझे क्या कर रहा है रे?
4: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
3: ये तो बताओ, कोई पता चला?
4: गुरु गुरु,
5: इस 19 जून को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
6: तो शुभकामनाएं, देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
3: शीघ्र शीघ्र।
5: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208-514-5400, बुक ऑनलाइन एट इवेंटब्राइट।
7: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड।
8: लंदन में एक महान धार्मिक अवसर यूनिटी इन डिविनिटी प्रेजेंट्स महासोम यज्ञ 14th to 21st June, वुडलेन स्टैनमोर के टेंपल ग्राउंड्स पर। फ्री एंट्री, सपरिवार अवश्य पधारिए। रोज सुबह 10 से 3 बजे तक यज्ञ और 4 से 7 बजे तक मनोरथ फॉलोड बाय महाप्रसाद। आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वॉलंटियर बनना चाहते हैं या यज्ञ सेवा लेना चाहते हैं, तो आज ही रजिस्टर करें। वेन्यू टेंपल ग्राउंड्स, वुडलेन स्टैनमोर, HA74LF। फॉर मोर डिटेल्स somyagna.com, कॉल 0793262 3852.
9: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
10: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
9: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
10: Call 0208-706-0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208-706-0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
9: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
11: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram.
10: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code Hamari Ram 10 for a 10% discount on all shows and tickets.
11: Exclusive radio partner Leica Radio.
12: Attention meat lovers of Rainer's Lane.
13: This is huge.
12: Tariq Halal is opening in Rainer's Lane on Wednesday the 17th of June. And you are all invited.
13: One day only. Spend just £1 and get up to £50 worth of top brand freebies.
12: But be quick. This golden giveaway is for the first 100 customers only.
13: Doors open at 10 a.m. sharp. 297 Rainer's Lane Pinner. HA55EH. Set your alarms, get there early and don't miss out.
12: Tariq Halal, Rainer's Lane. There is only one.
14: Weddings, celebrations, corporate events, Ragasan सब कुछ efficiently handle करते हैं। Perfect location ढूंढने से लेकर incredible themes design करने तक, world class cuisine से हर छोटी बड़ी requirement तक manage करते हैं। 30 साल से ज्यादा का experience हर event को खास बनाएं। फौरन का phone मिलाएं 0208-839-0880 और visit ragasan.com. Location, design, management या catering, Ragasan.
15: Transfer money home and turn everything
13: every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
15: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
13: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
15: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
13: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
15: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
13: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
16: Be part of a historic grand opening.
17: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
16: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
17: Departure 5th of September. Call now on 0203 773 633.
16: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
18: Eviction? Tenant dispute? Property ka masla? Kenton Solicitors London landlords or tenants ke liye fast action lete hain aur residential or commercial conveyancing plus commercial leases handle karte hain. Abhi call karein 0208 907 2444. That's 0208 907 2444.
19: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
2: मनोरंजन विद रवि शर्मा.

स्वागत है मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में। ये लाइका रेडियो नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो। मेरा नाम रवि शर्मा है और मैं आपकी सेवा में दोपहर बाद 1 बजे तक हाजिर हूं। ब्रिटिश समय के अनुसार इस वक्त घड़ियों में 11:05 हुआ चाहते हैं, यूरोप में 12:05 हुआ चाहते हैं। स्वागत है भाई आप सबका, आप जहां भी हमें सुन पा रहे हैं, हमारा साथ निभा रहे हैं। ये समय है चिंतन का, थॉट फॉर द डे, आज का विचार। और आज के चिंतन के लिए हमें ओस्लो नॉर्वे से आलेख प्राप्त हुआ है सुधीर सिंह और ममता सिंह का। कहते हैं, हम पूरे परिवार के साथ आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं, हमारा चिंतन आज प्रोग्राम में शामिल कीजिएगा। सुधीर, यति और कहते हैं भारत से आई हैं हमारी जो है परिवार की एक और सदस्य रेखा। रेखा जी स्वागत है आपका यूरोप में और लाइका रेडियो परिवार में, आप भी जुड़िए हमारे साथ। भारत लौटकर भी आप हमारे कार्यक्रम सुन सकती हैं, पूरी दुनिया में पहुंचते हैं हमारे प्रोग्राम। तो सुधीर जी और ममता जी, आपका भेजा आलेख सर आंखों पर प्रस्तुत है। आज का विचार, थॉट फॉर द डे, यानी चिंतन।

आज के चिंतन में हम कुछ ऐसे व्यक्तित्वों का जिक्र करना चाहते हैं जो राजनीति में नजर आते हैं लेकिन राजनीति नहीं करते हैं। राजनीति शब्द अपने आप में बड़ा बदनाम सा हो रहा है। रावण के द्वारा ठुकराए जाने पर विभीषण राम जी के कैंप की तरफ आते हैं। उन्हें इस तरह आता देख करके, युद्ध का माहौल था, जंग के दिन थे, लड़ाई चल रही थी हनुमान जी की सेना और रावण की सेना में, तो जो गुप्तचर थे, गुप्तचर यानी जो जासूस थे, उन्होंने पता लगाया और कहने लगे, शत्रु का भाई हमारे कैंप की तरफ आ रहा है, प्रभु आप आदेश दें तो उसे बंदी बना लें, उसे कैद कर लें। राम जी ने कहा, क्यों? प्रभु शत्रु का भाई है। भाई जरूर है लेकिन वो विचारधारा का मतभेद होने के कारण हमारी तरफ आ रहा है। वो हमसे युद्ध करने नहीं, हमारी शरण में आ रहा है और शरण में आए हुए को हम प्रोटेक्शन देते हैं, स्नेह देते हैं, प्यार देते हैं, दुत्कारते नहीं हैं, गिरफ्तार नहीं करते हैं। पर प्रभु राजनीति तो यह कहती है कि शत्रु का कोई भी व्यक्ति हमारी सीमा के आसपास, हमारे कैंप के नजदीक आए तो उसे अरेस्ट किया जाना चाहिए। श्री राम ने कहा, वो राजनीति है, हम राजनीति नहीं, हम राम नीति करते हैं, आए हुए को अपनाना। और विभीषण आए, शत्रु का भाई, तो राम जी ने आते ही उन्हें संबोधित किया, आओ लंकेश, लंकेश यानी लंका के राजा, पधारो, स्वागत है आपका। अब लंका के राजा तो रावण थे उस समय, और उनका भाई तो रावण के द्वारा लात मार करके दरबार से निकाले गए। विभीषण को लंकेश कह के बुलाया तो बानर और भालुओं की समझ में आया कि श्री राम ने ऑलरेडी फैसला कर लिया है कि युद्ध जीतने के बाद लंका का राज्य विभीषण को सौंप दिया जाएगा। अब देखिए राम की नीति, वो वनवासी है और वनवासी ही रहना चाहते हैं, वो किसी भी जंग को जीत कर किसी राज्य पर कब्जा नहीं चाहते, सत्ता नहीं चाहते। उन्होंने किष्किंधा में बाली को मारकर सुग्रीव का राज्य, सुग्रीव को सौंप दिया, उस पर अपना अधिकार नहीं जमाया। लंका में रावण को मारकर लंका का राज्य विभीषण को सौंप दिया, उस पर कब्जा नहीं जमाया। अरे अपना ही राज्य छोड़ करके, त्याग करके जो अयोध्या से आए हैं वो किसी और के राज्य पर क्यों अधिकार करेंगे? वो वनवासी का जीवन बिताएंगे, पिता की आज्ञा निभाएंगे। सत्ता के भूखे लोग जंग का कारण बनते हैं और सत्ता को त्याग करने वाले आदर्श बनते हैं। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ सत्ता की भूख के कारण, लेकिन एक आदमी ऐसा था जिसे सत्ता की बिल्कुल भी चाहत नहीं थी। आजादी मिलते ही मोहम्मद अली जिन्ना बने पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल। उन्हें सत्ता चाहिए थी, मिल गई। सही माने तो सत्ता के लिए ही उन्होंने बंटवारा करवाया। उधर नेहरू बने भारत के प्रधानमंत्री, और जब लॉर्ड माउंटबेटन ने पूछा कि यहां दिल्ली में इतना बड़ा सेलिब्रेशन चल रहा है, सारे नेता नजर आ रहे हैं पर गांधी नजर नहीं आ रहे, ये गांधी कहां हैं? तो नेहरू का जवाब था, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू कहते हैं, गांधी जहां है भारत वहां है। और पता लगा साहब, बंगाल में कहीं हिंदू मुस्लिम झगड़ों को सुलझाने के लिए वो बुजुर्ग, वो संत, वो बूढ़ा आदमी लाठी टिकाए चबूतरे पर बैठा लोगों को समझा रहा है, प्यार से रहो, क्योंकि एक प्यार ही है जो दुनिया में रहेगा। ये सत्ता की भूख ले बैठेगी, ये लड़ाई झगड़े वैर विरोध
ये बंटवारे, ये टूट फूट, इसमें सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं है। मिलजुल कर रहो, जुल्म का और जालिमों का खात्मा होगा। दुनिया में संत होंगे, कोई महात्मा होगा जो जीना सिखाएगा।

जुल्म न जालिम का यह अधिकार रहेगा, दुनिया में कुछ रहेगा तो बस प्यार रहेगा। प्यार बांटिए, प्यार लूटिए। आज का चिंतन, आज का विचार, जिसके लिए आलेख ओस्लो नॉर्वे से हमें सुधीर सिंह और ममता सिंह ने भिजवाया।

0: दुनिया में कुछ रहेगा तो बस प्यार रहेगा, आज का चिंतन आज का विचार रहेगा।
1: चिंतन चिंतन
0: आज के चिंतन के साथ गीत मोहम्मद अजीज अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में था। और आलेख फिर याद दिला दें आपको कि ओस्लो नॉर्वे से भिजवाया हमें सुधीर और ममता ने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई स्वागत रेखा जी को जो भारत से आई हैं ओस्लो में, इस समय ये प्रोग्राम सुन रही हैं। और यति बिटिया आपका भी जोरदार स्वागत। याद दिला दें आपको भाई चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद, ब्रिटिश 11 बजे की खबरों के बाद। यूरोप में इस समय 12 बज चुके हैं, दोपहर हो गई है। तो वेरी गुड आफ्टरनून डियर पीपल लिसनर्स, प्यारे प्यारे श्रोता। और भाई स्वागत है आप सबका, जुड़े और लोगों को भी जोड़े, चिंतन सुने 11 बजे की खबरों के बाद ब्रिटिश समय के अनुसार। आज का चिंतन आज का विचार अब समाप्त होता है।

0: Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: SBI UK याद दिला रहे हैं भाई, पैसे भिजवाना चाहते हैं तो अवसर भी है, रेट भी अच्छा है, मौका है और ऑफर्स भी हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK टुडे फॉर £1 दे आर गिविंग 127.2 रुपीस। नोट कर लीजिए आज का रेट इस समय 127.20 रुपए फॉर £1। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और यूजिंग द SBI योनो मोबाइल ऐप। पर ध्यान रहे भाई, एक चीज और है, जून के महीने में खास ऑफर के, अगर आप £1,000 या इससे ज्यादा भिजवाते हैं एक बार में तो देर इज अ चांस टू विन £75 वाउचर एवरी डे। दिस इज द चांस और ऑल्सो ए 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर £2,000। Terms and conditions apply.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Gold.
2: Leica Radio.
0: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
1: फुटबॉल अपडेट में बता दें, कल बड़ी शानदार शुरुआत हुई है वर्ल्ड कप फुटबॉल की और कहती है कि अब तक का ये सबसे बड़ा आयोजन फुटबॉल की दुनिया में। तो कल भाई जो मैच हुआ वो तो साउथ अफ्रीका और मेक्सिको के बीच हुआ, मेक्सिको मेज़बान है, जहां कनाडा और अमेरिका व मेक्सिको तीनों मिलकर के इस महान वर्ल्ड कप का आयोजन जो है वो कर रहे हैं। तो कल ओपनिंग सेरेमनी और उसके बाद मैच हुआ, मैच मेक्सिको ने जीता 2-0 से। और भाई अब आगे बढ़ते मुकाबलों की सारी जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, सुनते रहिएगा लाइका रेडियो नेटवर्क पर वर्ल्ड कप 2026 के रिजल्ट्स, खेल। और भाई कल के मैच में कहते हैं रेड कार्ड कुछ ज्यादा ही दिखाए गए, गोल जितने हुए उससे कहीं ज्यादा रेड कार्ड्स जो है वो शो किए गए खिलाड़ियों को। पर सब कुछ होता है, मैच का हिस्सा है, एंजॉय कीजिएगा घर बैठे लाइका रेडियो नेटवर्क के साथ।
0: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
3: ये है लाइका गो।

0: अमजद फरीद साबरी और साथी सूफिया नकल हम सुन रहे थे। भाई आज बैक टू बैक संगीत के तहत कार्यक्रम के इस दौर में पहला गीत था तेरे संग प्यार में नहीं टूटना, दैट वाज टेकन फ्रॉम द फिल्म नागिन ऑफ 1976 एंड दिस वाज फ्रॉम द फिल्म हल्ला बोल। गीत संगीत की महफिल सजी है लाइका रेडियो नेटवर्क पर एंड माय नेम इज रवि शर्मा। दोपहर बाद एक बजे तक मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ।
1: Like our gold. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी डरता हूं। कहीं भूल से ये ना समझ बैठो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। अगर ऐसा समझोगी तो ठीक ही समझोगी।

0: chance.
1: Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
4: Like a Gold.
1: Like a Extra Podcast Update.
5: और आपको बता दें भाई, लाइका एक्स्ट्रा पर जो हमारा नया एपिसोड पॉडकास्ट का जो है वो आ गया है, बॉलीवुड रिवाइंड, ए थ्रोबैक टू 2000s, होस्टेड बाय अनुज राडिया। तो आप देखना मत भूलिएगा भाई, हमारे जो पॉडकास्ट हैं वो लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट जो है वो उपलब्ध रहते हैं स्पॉटिफाई पर, यूट्यूब पर, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स शोइंग देम।
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
6: लाइका गो
5: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
7: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
8: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
7: विजिट travelhubworld.com।
9: Can love really be lost? Can home be taken away from someone's heart?
10: ये प्यार जहर की तरह होता है, पता? तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता।
11: हमन है इश्क मस्ताना।
9: मैं वापस आऊंगा। A film by Imtiaz Ali।
10: अपने दिल के अंदर एक लड़की को रखना, जिसे 78 years से देखा तक नहीं।
9: Starring Diljit Dosanjh, Vedanga Reina and Sharvari. Music by A.R. Rahman. Produced by Birla Studios and Applause Entertainment. Main Vapas Aunga in cinemas on the 12th of June.
12: Location, location, location.
13: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
12: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
13: Located in Dubai in a prime location for high appreciation.
12: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
13: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
12: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
13: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
12: High appreciation.
13: In Dubai.
1: CTV and C5 proudly present Hamare Ram. Produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad. Ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July. Eventim Apollo Hammersmith. Hamare Ram.
14: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code HAMARERAM10 for a 10% discount on all shows and tickets.
1: Exclusive radio partner, Leica Radio.
15: Step into the new grand showroom of Gajul's Couture, Southall.
2: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
15: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
2: Plus beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Gajul's Couture, now open 7 days a week.
15: Gajul's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
12: London, good news! आपका फेवरेट iTag अब TRS Cash and Carry South Hall में. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTag is open 24/7 with free parking. Full iTag at Unit 123 South Bridgeway, South Hall, UB2 4AX. Once you visit, you come again and again.
16: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ। आप पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे, जहां मड़शे शांति, भक्ति अने आनंद, अने साथे आईफिल टावर, सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो। डिपार्चर 5 सितंबर ना। मंत्रा हॉलीडेज, कॉल करो 0203-773-6333। मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा।
17: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
18: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
17: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री perfect for cafes, restaurants, offices, shops, petrol stations or community spaces.
0: Rich, authentic taste every single time.
17: Royal Chai, brewed for business.
0: Email now, info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
4: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org. Assuming you want to get noticed.
8: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragazan.
1: Like a Goon. London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par. DAB Digital Radio par Alexa pe bolo play Like a Gold. Aur online suno likeagold.com pe.
8: Cool music for a super hot summertime on the Leica Radio Network.
19: आवाज की दुनिया के दोस्तों, आप सुन रहे हैं मनोरंजन प्रोग्राम, आपके अपने प्रेजेंटर

0: व्हाट ए सॉन्ग भाई, गीत तो बहुत बढ़िया है लेकिन इसके बजाने का अवसर मौका भी देखा जाना चाहिए। मुझे याद आ रहा है एक शादी में बज रहा था ये गीत, ठीक उस समय जब दुल्हन दूल्हे के गले में माला डाल रही थी, गाना बज रहा था मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा। बताइए क्या तालमेल बनता है भाई। हम कोशिश करते हैं कि जो बात कर रहे हो गीत उससे कुछ मिलता जुलता हो, माहौल वैसा हो, एटमोसफियर। अब देखिए जब दुल्हन विदा हो रही थी, बारात जानी थी दुल्हन को लेके, भाई दूल्हा गाड़ी में बैठा, दुल्हन बैठी, और जैसे ही ड्राइवर ने गाड़ी ऑन की तो गाना बजा गाड़ी में, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले, दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। ले जा भाई मौत का सामान ले जा, ले जा। थैंक यू वेरी मच। बैक टू बैक संगीत सुनवा करके प्रोग्राम के तीसरे और अंतिम दौर का हमने आगाज कर लिया है। अब एक बार फिर से बता दें पाउंड का रेट क्या चल रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके में।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with YONO SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Well, SBI UK. भाई आज का इस समय का रेट वो दे रहे हैं फॉर वन पाउंड 127.2 रुपीज मैक्सिमम। लेकिन ये तो भाई आप उनकी किसी भी ब्रांच में जाकर या SBI YONO ऐप के माध्यम से भिजवा सकते हैं, पर अगर आप 1000 पाउंड से ज़्यादा भिजवाते हैं तो एवरी डे दे आर गिविंग 75 पाउंड वाउचर जीतने का चांस, और अगर आप 2000 पाउंड से ज़्यादा की राशि भिजवाते हैं तो देर इज़ ए चांस ऑफ विनिंग 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक। Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai.
3: Like a gold.
2: Like a gold.
1: Women's Cricket Update, presented by Carmel Prabhakar, are brought to you by TW Pays. If you're overpaying on your card terminal, we'll show you the truth and cut your costs.
4: And RoboThink, where children don't just use technology, they learn to build it. robothink.co.uk/Leica.
0: और भाई भाइयों जबरदस्त मुकाबले शुरू हो रहे हैं ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के। कमल प्रभाकर जो क्रिकेट के एक्सपर्ट्स हैं और भाई हमारे सहयोगी, वो मैच के बारे में जो है रिपोर्ट्स और भाई स्कोर संभावनाएं, कैचेस, मैचेस जीतने के चांसेस किसके हैं, ये सारी जानकारी देंगे। तो क्योंकि पहला मैच जो है आज T20 वर्ल्ड कप, महिला वर्ल्ड कप का, वो शाम को शुरू होगा और कमल उपलब्ध रहेंगे मैच के दौरान जानकारी देने के लिए। लेकिन साहब बता दूं आपको कि मैं तो जब वर्ल्ड कप शुरू नहीं हुआ था, आज से शुरू हो रहा है, मैं तो तब भी महिलाओं के क्रिकेट की चर्चा करता रहा हूं क्योंकि मैं ही हूं एक जो महिलाओं की कदर करता है। But it will be very interesting. Today's match is between England and Sri Lanka. Yes, England versus Sri Lanka. Edgbaston, यानी Birmingham में जो Edgbaston का ground है वहाँ पर ये match खेला जाएगा। T20 World Cup, Women's World Cup, बहुत दिलचस्प होगा ज़रूर भाई। अगर मैदान में जाके नहीं देख सकते हैं तो अपने रेडियो के आसपास रहिएगा, हम वहाँ का हाल, वहाँ की स्थिति जो है आप तक पहुँचाते रहेंगे।
1: This update was brought to you by TW Pays. Visit TWPays.com/Leica for a chance to win a free card terminal. T's and C's apply.
4: And RoboThink. This summer, give your child a head start in AI, robotics and coding. Places are limited. Save 20% on full week summer camp bookings with code LEICA20 at participating locations. Book now at robothink.co.uk. Terms apply.
5: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
6: No more worries for me or you. south or travel. At all protected. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
7: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
7: High appreciation.
8: In Dubai.
9: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
10: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
9: No fee, no gimmicks, real money.

0: the track. Brought to you by Derry Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug, Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
2: ये गीत सुनाने से पहले बता दूं आपको कि सप्ताह के आर्टिस्ट किशोर कुमार की आवाज़ में आपने बहुत सारे गाने सुने और अभी तो बहुत सुनेंगे क्योंकि संडे तक वही बोलबाला रहेगा उनका और अगले सप्ताह कोई और नए कलाकार होंगे आर्टिस्ट ऑफ द वीक, तो फिर उनकी आवाज़ गूंजेगी या उनकी फिल्मों से जुड़े गीत आप सुन पाएंगे। राइट नाउ हियर इज द सॉन्ग। मोहम्मद रफ़ी साहब और मन्ना डे के स्वर जब मिलते हैं तो इस तरह के गीत पर्दे पर चलते हैं, फूलते फलते हैं।

0: good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Women's Cricket Updates, presented by Carmel Prabhakar, are brought to you by TW Pays. If you're overpaying on your card terminal, we'll show you the truth and cut your costs.
2: And RoboThink, where children don't just use technology, they learn to build it. robothink.co.uk/Leica.
3: और भाई कमल प्रभाकर से मेरी बात हुई, बड़े एक्सपर्ट्स हैं क्रिकेट के, भाई एसेक्स के लिए खेलते रहे हैं, और कमल प्रभाकर कह रहे हैं मैं तैयार हूँ, शाम को मैच शुरू होगा 6:30 बजे, वर्ल्ड कप विमेंस वर्ल्ड कप का जो पहला मैच है वो श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा एजबेस्टन के मैदान में, और बहन भाइयों वहाँ से एक एक गेंद, एक एक रन, एक एक विकेट, और भाई जो भी ख़ास बातें होंगी मैच की वो आप तक पहुँचाएंगे कमल प्रभाकर, तो आप जुड़े रहिएगा Leica Radio Network par Leica Gold ke saath.
0: This update was brought to you by TW Pays. Visit twpays.com/Leica for a chance to win a free card terminal. T's and C's apply.
2: And RoboThink. This summer, give your child a head start in AI, robotics and coding. Places are limited. Save 20% on full week summer camp bookings with code LEICA20 at participating locations. Book now at robothink.co.uk. Terms apply.
3: और भाई कुछ एक जानकारी हमारे पास है, एक तो लाइका रेडियो नेटवर्क टीम सब विदत तारिक हलाल फॉर द ओपनिंग ऑफ देयर न्यू रेनर्स लेन ब्रांच ऑन वेंसडे 17th of June लोकेटेड एट 297 रेनर्स लेन पिनर HA5 5EJ. और इसके अलावा भाई एक और जानकारी वो है उस शो के बारे में जो काफ़ी चर्चित है, काफ़ी लोकप्रिय है, हमारे राम, लाइका रेडियो नेटवर्क टीम सब विद जी टी वी फॉर दिस स्टेज शो हमारे राम, टेकिंग प्लेस बिटवीन 9 and 12 July एट लंडन एवेंटिम अपोलो. इट स्टार्स आशुतोष राणा एज रावण एंड राहुल भूचर एज राम. देखना मत भूलिए, अपनी टिकटों का इंतजाम कर लीजिएगा भाई समय से.
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM.
4: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.
5: मुझे कुछ कहना है,
3: मुझे नहीं सुनना है,
6: कुछ कहना है,
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी

0: जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

0: इस गीत को सुनकर के आपको एक खूबसूरत अभिनेत्री याद आएगी भाई। साउथ की ये एक्ट्रेस जिसने बड़े बड़े साउथ के सितारों के साथ काम किया और नॉर्थ के भी, याद करिए पद्मिनी। आज दुनिया में होती तो भाई वो अपना जन्मदिन मना रही होती है। नहीं जन्मदिन मालूम नहीं है भाई, कहते हैं कि पर आई डोंट नो, लेकिन पद्मिनी की याद आई। पद्मिनी पर ये गीत पिक्चराइज हुआ था और पद्मिनी पर कुछ और भी गीत, लेकिन वो अभिनेत्री उत्तर भारत की यानी हिंदी फिल्मों में कम नजर आई। साउथ में तो साहब जो उस समय के बड़े बड़े सितारे थे जैसे कि रामचंद्रन, एमजी रामचंद्रन, शिवाजी गणेशन, एनटी रामा राव, अरे साहब किसके साथ काम नहीं किया। और उत्तर में हिंदी फिल्मों में राज कपूर, शम्मी कपूर, प्रेम नजीर, राजकुमार, जेमिनी गणेशन भाई बहुत फिल्मों में नजर आई थी। वैसे ही बस उनका ख्याल आया, याद आई, मुझे लगा कि आज उनका जन्मदिन भी है। है तो भाई वो तो दुनिया में है नहीं, लेकिन उनके चाहने वाले बहुत हैं तो याद कर लेते हैं उन्हें।
1: ये है लाइका गोल्ड।
2: You know that clean, fresh feeling after brushing? Sidayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Sidayu, Ayurved that fits your life.
3: अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा।
4: महाराजा टूर्स ला रहे हैं कैप्टिवेटिंग चाइना 2026, शंघाई, बेजिंग, शान और चेंगडू का अनफॉरगेटेबल सफर, ग्रेट वॉल, टेराकोटा वॉरियर्स, हाई स्पीड ट्रेन्स और एडोरेबल पैंडास, फ्लाइट्स, होटल्स, इंडियन खाना और गाइडेड टूर्स सब इंक्लूडेड फ्रॉम £3,299 पर पर्सन। विजिट maharajatours.co.uk या कॉल 07956154848 6.
5: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
2: Atif Aslam live in the UK.
5: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
2: Book your tickets now at AXS.
5: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
2: Exclusive radio partner, Leica Radio.
6: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
7: Attention meat lovers of Rayner's Lane.
8: This is huge.
7: Farik Halal is opening in Rayner's Lane on Wednesday the 17th of June. And you are all invited.
8: One day only. Spend just £1 and get up to £50 worth of top brand freebies.
7: But be quick. This golden giveaway is for the first 100 customers only.
8: Doors open at 10 a.m. sharp. 297 Rayner's Lane Pinner. HA55EH. Set your alarms, get there early and don't miss out.
7: Farik Halal, Rayner's Lane. There is only one. Can love really be lost? Can home be taken away from someone's heart?
9: ये प्यार जहर की तरह होता है, पता? तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता।
10: अमन है इश्क मस्ताना।
7: मैं वापस आऊंगा। A film by Imtiaz Ali.
9: अपने दिल के अंदर एक लड़की को रखना, जिसे 78 years से देखा तक नहीं।
7: Starring Diljit Dosanjh, Vedanga Reina and Sharvari. Music by A.R. Rahman. Produced by Birla Studios and Applause Entertainment. Main Vapas Aunga in cinemas on the 12th of June.
11: Location, location, location.
12: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
11: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
12: Located in Dubai in a prime location for high appreciation.
11: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 02 03963 5757. Greens by Danube. Prime location,
11: high appreciation
12: in Dubai.
13: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T&Cs apply। Experience the ultimate escape, 25 unforgettable days across Australia, breathtaking New Zealand and paradise in Fiji. 2 departures November and February, it's the holiday of a lifetime. First 10 bookings get 300 off. Visit sonatours.co.uk or call 0208 951 0111.
14: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
15: No worries, I'm having fun on Play Ojo.
16: Keep it fun with PlayOjo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
14: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
15: Thanks. Playtime's over. Mmm, lovely.
17: Feel the fun. PlayOjo.
18: 18 plus, gamble aware.
1: Manoranjan with Ravi Sharma.
0: That's it, बहन भाइयों, समय हो गया है कार्यक्रम में अब आपसे इजाजत लेने का। बाली भाई विल बी विद यू आफ्टर 1 o'clock न्यूज। मुझे अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत दीजिए, सोमवार को मिलते हैं 10 बजे की खबरों के बाद। हैव ए सुपर्ब डे, बाय बाय।

0: तो कभी छांव,
1: कभी धूप तो कभी छांव। अहमदाबाद विटनेस्ड वन ऑफ द डार्केस्ट चैप्टर्स। There was 260 lives lost on 12th of June 2025, Air India flight AI171. While the wreckage has been cleared and the city has moved forward, the pain remains unchanged for families who lost loved ones that day.
2: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Like a gold in London, the Midlands and Manchester.
3: Gem in Gold Afternoons with Bali Brambert. Bali Brambert. Gem in Foods, bilkul ghar jaisa swad aur ghar jaisi hi baat. Available at Asian stores near you.
4: Go Bang London teams up for the Atif Aslam concert in association with Leica Radio Network. For you to win a 5 gram gold coin. If you've bought a group of 5 tickets or more to the concert, you could be in with a chance to win this golden prize. Just attend on the night and wait for the host to announce the ticket number or your name. If it's yours, you'll be walking away richer thanks to Gold Bank London. Atif Aslam, live at the O2, Sunday the 14th of June. T's and C's apply.
5: Mum, I don't know what to do anymore. My hair is getting worse. I've tried everything. Nothing works.
6: Beta, you're not alone. For 5 generations, our family trusted one thing. Pure herbal care. Amla, Bringraj, Neem. Real ingredients, not chemicals.
5: So where do we find something like that now?
6: Right here in London. Baidyanath Sidhayu Hair Oil, Shampoo and Toothpaste. Pure Ayurvedic, premium and made the way our eldest used it.
7: From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
8: लंदन में एक महान धार्मिक अवसर यूनिटी इन डिविनिटी प्रेजेंट्स महासोम यज्ञ 14th to 21st June वुडलेन स्टैनमोर के टेंपल ग्राउंड्स पर फ्री एंट्री सपरिवार अवश्य पधारिए रोज सुबह 10 से 3 बजे तक यज्ञ और 4 से 7 बजे तक मनोरथ फॉलोड बाय महाप्रसाद आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वॉलंटियर बनना चाहते हैं या यज्ञ सेवा लेना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर करें वेन्यू टेंपल ग्राउंड्स वुडलेन स्टैनमोर HA74LF फॉर मोर डिटेल्स somyagna.com कॉल 07932623852
9: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश हिंदी गुजराती मराठी तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208922334 24-hour line.
10: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
11: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन
12: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
13: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
12: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
13: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
12: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
13: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
12: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
13: To book, call our London office on 020-3963-575. 7 Greens by Danube. Prime location,
12: High Appreciation
13: in Dubai.
5: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
0: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
5: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
0: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
5: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
0: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
14: वीजा प्रॉब्लम? इंतजार मत करें, हर डिले आपको महंगा पड़ सकता है. कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन, असाइलम केसेस, अपील्स, स्किल्ड वर्कर वीजा, स्पॉन्सरशिप लाइसेंस और रिफ्यूजल पर फास्ट काम करते हैं. अभी कॉल करें 0208-907-2444. दैट्स 0208-907-2444.
15: 10 days to Turkey, guaranteed departure on 18th September. Book early to avoid disappointment. Visit sonatours.co.uk or call 0208-951-0111.
16: Across London, this is Bally Brambat on Like a Gold.

0: उषा खन्ना जी ने कंपोज किया, उषा खन्ना जी ने गाया और इसमें मेल वर्जन भी है।
1: London's biggest classics all day. Like a gold.
0: फिल्म है कब, क्यों और कहां। कब नियरली 2 बजे ये गाना सुनाई दे रहा है। क्यों, क्योंकि इट्स अ सिजलिंग फ्राइडे, एंजॉय योरसेल्फ। कहां, लाइका गोल्ड पे।

ये गाना मैं फरीदा गुलाम अली की नजर करता हूँ। आशा भोसले और लता मंगेशकर, वी हैव बीन डूइंग अ ट्रिब्यूट ऑफ नन अदर देन पद्मिनी। होप यू एंजॉयड।

0: Can love really be lost? Can home be taken away from someone's heart?
1: ये प्यार जहर की तरह होता है, पता? तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता।
2: अमन है इश्क मस्ताना।
0: मैं वापस आऊंगा। A film by Imtiaz Ali।
1: अपने दिल के अंदर एक लड़की को रखना, जिसे 78 years से देखा तक नहीं।
0: Starring Diljit Dosanjh, Vedanga Reina and Sharvari. Music by A.R. Rahman. Produced by Birla Studios and Applause Entertainment. Main Vapas Aunga in cinemas now.
3: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
4: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
3: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
4: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
3: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
4: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
3: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
4: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
5: It's India versus Pakistan, and this is India's lineup.
6: This tune, the FIH Hockey Pro League, brings one of sport's greatest rivalries to London.
7: India versus Pakistan, live at the Lee Valley Hockey and Tennis Centre.
6: High speed, high intensity, absolutely unmissable. Get your tickets now at englandhockey.co.uk.
5: To open the scoring, he does!
7: India versus Pakistan, London, 23rd and 26th June. Be there.
5: So India looking to press home that advantage. There's a chance.
8: Discover Portugal with a Lisbon and Madeira Twin Centre Escape. Fly from the UK, enjoy three night stays with breakfasts, connecting flight and more. Prices start from just £599 per person. For great deals on cruise and holidays, visit www.skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
9: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
10: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
11: Visit mantraholidays.co.uk or call 02037736333 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
12: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T&Cs अप्लाई।
13: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
14: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
13: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
14: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
13: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
14: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
15: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com। कॉल 02087677627।
16: योर कॉल इज इम्पोर्टेंट टू अस, यू आर करंटली नंबर 25 इन द क्यू।
17: 25? सीरियसली?
16: Sounds like Ojo time.
17: Nice idea. Feel the fun with Play Ojo, the online casino with all the latest live casino and slot games. New players get 50 free spins on Big Bash Bonanza, plus instant payouts on winnings.
16: Sorry about the wait. How can I help?
17: You can help me celebrate. I won.
18: Feel the fun. Play Ojo.
19: First deposit only. Most wins are instant. 18 plus. Gamble aware. T's and C's apply.
20: Star Track of the Hour, sponsored by Star Tours. From Italy to Paris, Japan to USA, Star Tours takes you where you want to go. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: करो। कितना प्यारा गाना है। सॉरी मुझे हंसी आ रही है बिकॉज जब वीकेंड आता है एंड सैंडी शाह कम्स एंड डज अ बिट ऑफ बैंटर ही गेट्स मी क्रैकिंग यू नो सो ही मेड माय वीकेंड एंड आई एम गोना लीव यू विद हिम। सैंडी शाह ऑन ड्राइव टाइम एंड आई एम गोना ड्राइव होम नाउ एंड राजपतन on Leica Radio Midlands. Bye-bye.
1: Bali Brumbutt on Gold Afternoons. Leica
2: Gold. This song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.
0: I got news for you. It's Annika. 4 to 7 on Leica Radio Midlands. Good luck, Annika. Merci.

0: experienced tour operators for air, coach and cruise holidays. So now, whenever you plan for a holiday, plan with Serene Holidays.
1: Call Deepthi Pandya today.
0: 0116-266-2481. For more information, log on to sereneholidays.co.uk.
2: गड़बड़ घोटाला छे, problems मोटा छे, पर बदु alright छे.
3: नेचे ने back to back तरण movies जोई ली थी.
2: Get ready for a full on comedy chaos with Veeraj Ghelani and Umang Vyas in the movie बदु alright छे.
3: बेहतर कलकल पाचो आई जैसे ने पच्ची बदु alright थे जैसे.
2: In cinemas on 12th of June. For more info, visit Bakrania Media's Instagram handle.
4: ये वो लगे छे के picture चल्च.
5: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
6: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
5: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
6: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
5: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
6: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
7: Sonatours.co.uk. This September, witness the opening of the BAPS Mandir in Paris on a 4 or 5 day tour. Book your journey of blessings and sightseeing with Sonatours. Call 0208 951 0111.

0: Breaker Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester, and the Midlands with the UK's biggest Asian hits. Leica Gold, traffic and travel.
1: This is Martin with your travel. Delays on the M4 onto the elevated section eastbound as you head from Junction 3 Hayes to Junction 2 Brentford. Slowing on the A312 Church Road and Mandeville Road from the White Hart roundabout to the Target roundabout and on to North Holt Station. The A406 North Circular Road, heavy both ways at the Hanger Lane Gyratory. Slow on the A40 Western Avenue westbound before Gypsy Corner. Delays on the A316 Chertsey Road westbound from Twickenham Bridge to Hospital Bridge Road roundabout to the Tube, and severe delays on the Central Line between North Acton and West Ruislip, and minor delays on the rest of the line due to cancellations, and severe delays on the Victoria Line due to a track fault at Walthamstow Central.
2: Leica Gold. आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344-24
3: Our line. बोले तूने क्या कर रहा है रे?
4: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
3: ये तो बताओ, कोई पता चला?
4: गुरु गुरु,
5: इस 19 जून को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
3: चारू, तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
6: शीघ्र शीघ्र।
5: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208-514-5400, बुक ऑनलाइन एट Eventbrite।
2: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर Leica Gold.
7: It's India versus Pakistan and this is India's lineup.
8: इस जून FIH हॉकी प्रो लीग लेकर आ रहा है स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी राइवलरी लंदन में। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान लाइव एट ली वैली हॉकी एंड टेनिस सेंटर। हाई स्पीड एक्शन, हाई इंटेंसिटी मोमेंट्स, बिल्कुल अनमिसेबल। अपने टिकट्स अभी बुक करें एट englandhockey.co.uk। India versus Pakistan, London, 23rd or 26th June. Be there.
7: So India looking to press home that advantage. There's a chance.
9: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 0208-839-0880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
10: सिरीन हॉलीडेज अपने पूर्व अफ्रिकाना स्थलों ने मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे। कंपाला, नाइरोबी, मुंबासा, जांजिबार अने दारेसलाम साथे जिंजा अने मचिसन फॉल्स।
11: बस पैक करो अने रिलैक्स थई जाओ,
10: केम के आपनी सफर अमारी सफर छे। वधु माहिती माटे
11: कॉल करो दीप्ति पंड्या ने
10: 0116266481 पर। वधु माहिती माटे लॉग इन करो sirinholidays.co.uk पर।
12: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
13: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
12: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
13: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
14: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208-150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
15: वीजा प्रॉब्लम? इंतजार मत करें, हर डिले आपको महंगा पड़ सकता है। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन असाइलम केसेस, अपील्स, स्किल्ड वर्कर वीजा, स्पॉन्सरशिप लाइसेंस और रिफ्यूजल पर फास्ट काम करते हैं। अभी कॉल करें 0208-907-2444। That's 0208-907-2444।
6: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
16: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
6: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
0: नेक्स्ट Ashwini, in for Anisa Nasir on the evening show on Like a Gold.
17: नमस्कार, रवि शर्मा रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ। मंडे टू फ्राइडे जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच, मंडे टू फ्राइडे मनोरंजन विद रवि शर्मा।
18: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: बचिया देखा हो बाबुआ गोरी गोरी छोरी पे दीवाना होई गवा।
1: अरे तो का ऐसे का तोहार मैला तो काली है।
0: काली है तो का हुआ।

0: जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। फैंटास्टिक फ्राइडे के लिए क्या आप लोग हैं तैयार? आते से आपको पैसा ये पैसा किशोर कुमार की आवाज में कर्ज फिल्म से सुनाया, एंड उसके पहले यारा ओ यारा विनोद राठौड़ अनिका यादने की आवाज में जीत फिल्म से। अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुके हैं सारे के सारे हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स और लिसनरनिया सब के सब जो हैं अब अपनी अपनी अटेंडेंस यहां दर्ज करवा रहे हैं। आइए आइए फटाफट आइए फैंटास्टिक फ्राइडे की इस म्यूजिकल जर्नी में आप और हम चलेंगे इस साथ साथ। खाना वाना खा लिया, कैलोरीज बर्न करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि फ्राइडे आपको पता है कि आरजे अश्विनी बन जाती है डीजे अश्विनी, और पूरा माहौल जो है वो ऐसे लेवल का होता है जहाँ पे आपको वॉल्यूम जो है पूरा ऐसे वॉल्यूम फुल करके डांस करने की इच्छा होती है, और आसपास के लोगों को पता चल जाता है कि फैंटास्टिक फ्राइडे शायद इनका शुरू हो गया है। हाँ, तो आज का असाइनमेंट क्या मैं दे रही हूँ आप सबको? ओके, तो मेरे साइलेंट प्यारे प्यारे लिसनर्स, आप भी अपनी अटेंडेंस लगा सकते हैं जी। अटेंडेंस रजिस्टर तो सबके लिए खुला है, आइए आइए अपनी अटेंडेंस लगाइए। अब कुछ हमारे लिसनर थोड़े लेट हो जाते हैं क्योंकि वो भी काम में बिजी होते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, लेकिन वो सुनते रहते हैं, कहते हैं अरे हमने मैसेज नहीं किया था, हम भूल गए थे। कोई ना वी विल अकोमोडेट आपकी ये सारे मैसेजेस। आज का असाइनमेंट क्या है? फ्राइडे है, वीकेंड आ गया, तो हम उस मोड में आ गए कि पूरा पूरा एंजॉय करेंगे, चाहे रेडियो शो हो चाहे फिर टेलीविजन पे कुछ देखना हो, मूवीज़ हो वेब सीरीज़ हो। सो अगेन रैंडम सा सवाल है, कोई बहुत लॉजिक इसमें नहीं है, बहुत गहरा वाला सवाल नहीं, छोटू सा प्यारा सा सवाल है। अब आई एम फीमेल जिसे ना ऐसे अटरम सटरम कुछ खाने की इच्छा होती है जब मैं टेलीविज़न देखती हूँ, तो कभी वो गुड़ और पीनट वाली चिक्की खा लिए, कभी पॉपकॉर्न खा लिए, बैठे बैठे नट्स ही चबा लिए, कभी आई एम नॉट दैट बिग फैन ऑफ आइसक्रीम, लेकिन वंस अ वाइल जब फैमिली के साथ में आइसक्रीम हो जाता है तो चलो आइसक्रीम। सो टेलीविज़न देखते समय कुछ तो मतलब ये जो ये जो मुँह है वो चलते रहता है, कुछ ना कुछ खाना पीना चलते रहता है। तो क्या आपकी भी ऐसी आदत है कि जब टेलीविज़न देखने बैठे हैं, स्पेशली कोई मूवी है या फिर वेब सीरीज बैठ गए हैं देखने के लिए, तो कुछ चाहिए या मंचिंग कुछ तो चाहिए? अटरम सट्रम इक्वल टू मंचिंग, इफ यू डोंट नो व्हाट अटरम सट्रम मींस, इट मींस मंचिंग, कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। बताइए बताइए जल्दी जल्दी बताइए, एंड फ्राइडे में आ जाइए, फैंटास्टिक फ्राइडे में आ जाइए भाई यहाँ पे।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: For £1 in British sterling, you could get up to 127.20 Indian rupees. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, 1 gram of gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Laika Gold.

0: Probates. Brought to you by Rack Law Solicitors. Specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
1: ग्रुप ए में मैच हुआ साउथ कोरिया एंड चेस रिपब्लिक के बीच, जिसमें साउथ कोरिया ने दागे दो गोल एंड चेस रिपब्लिक ने बनाया केवल एक गोल। ग्रुप बी में कनाडा और बोस्निया हर्जगोविना, यस दैट्स द नेम, इनके बीच होने वाला है मैच 8 बजे। एंड रिमेम्बर कि यू कैन गेट 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद अ स्पॉन्सर रॉक लॉ इफ यू मेंशन लाइका।
0: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show.

0: हाँ जी मिला लेंगे एक बार घड़ी, यहाँ देखते हैं टाइम कितना हुआ है, इट्स 24 मिनट्स पास्ट 7। आप सभी ने ट्यून इन किया है फैंटास्टिक फ्राइडे ऑन द इवनिंग शो विद अश्विनी। आप जरा ध्यान से सुनिएगा। लाइका रेडियो नेटवर्क टीम्स अप विद तारिक हलाल फॉर द ओपनिंग ऑफ देयर न्यू रेनर्स लेन ब्रांच ऑन वेंसडे 17th ऑफ जून, लोकेटेड एट 297 रेनर्स लेन पिना HA5 5EJ. The first 100 customers will have the chance to claim a golden ticket on first come first serve basis. Spend £1 and receive £50 worth of food items. Terms and conditions apply. Leica Radio Network will also be broadcasting live from there. 10 बजे से लेके दोपहर 1 बजे तक वहाँ से हमारे प्रेजेंटर्स आपके साथ में गपशप जरूर करेंगे। फैंटास्टिक फ्राइडे में आज मेरा सवाल है कि टीवी देखते समय क्या आपको भी मंचिंग की आदत है? तो बहुत सारे लोग बता रहे हैं अपनी अपनी मंचिंग की आदत के बारे में। किसी ने कहा कि भाई मैं ना, मेरी आदत है कि मैं बहुत सारा सैलड कट कर लेती हूँ एंड वाइल वॉचिंग टेलीविजन आई कीप ऑन मंचिंग दैट। हेल्दी ऑप्शंस मुझे काफ़ी दिख रहे हैं। किसी ने कहा कि मैं चना जो होता है वो लेके मैं खाते बैठता हूँ जब मैं टेलीविजन देखता हूँ। तो किसी ने कहा कि ग्रीन टी लेकर हम बैठते हैं और फिर ऑब्वियसली एक एक चुस्की ग्रीन टी की मारी जाती है वाइल वॉचिंग टेलीविजन। क्या बात है। कुछ ही देर में बात करने वाले हैं कुछ वियर्ड न्यूज़ के बारे में। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी।
1: पैक्ड फॉर द ट्रिप, गिफ्ट्स, पासपोर्ट
2: चेक, जस्ट ड्रेडिंग दैट फोन बिल व्हेन आई गेट बैक फ्रॉम इंडिया। रोमिंग इज अ नाइटमेयर।
3: मेट, यू आर डूइंग इट रॉन्ग। जस्ट गेट सिमजी।
2: सिमजी
3: इज एन ई सिम ऐप। यू बाय अ डेटा प्लान फॉर इंडिया स्टार्टिंग एट जस्ट $5. नो स्वैपिंग प्लास्टिक सिम, no kiosks.
4: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
5: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit

0: feel good track brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: मिलाने की घड़ियां देखते हैं टाइम कितना हुआ है 8:36 PM. आप सभी ने ट्यून इन किया है द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो. हम मना रहे हैं फैंटास्टिक फ्राइडे, तो सबकी डिशेस भी आना शुरू हो गया है. किसने किसने डिनर में क्या बनाया, यमी यमी डिशेस. कई लोग अपना खाना वाना खा के तैयार, कहते हैं कि भाई अब आपने कहा था कि फ्राइडे जो है कम्प्लीटली घर में ही हम डिश को इसको बना सकते हैं. यार एक्चुअली बना सकते हो ना. देखो एक तो अभी फिलहाल तो उजाला है, जैसे जैसे अंधेरा हो ना तो वो ऑल दैट ढिंचक लाइटिंग जो होती है ना, डिस्को लाइट्स है ना, वो घर में ही लगा लो, क्योंकि म्यूजिक तो ऐसे ही चल रहा है. आपकी हमारी गपशप भी चलती रहती है, मस्ती मज़ा इंटरेक्शन भी चलते रहता है ना. ओके किशोर कुमार फैंस, गेट रेडी फॉर क्रेजी फॉर किशोर, अ स्पेशल म्यूजिकल नाइट फीचरिंग जॉय इंद्रायणी संजय विथ हीनल एंड 515 बैंड. इट टेक्स प्लेस ऑन फ्राइडे 19th June एट द प्रिंस रीजेंट होटल चिगवेल एसेक्स. Tickets available at eventbrite.co.uk or call 020-8514-5400. Exclusive radio partner Leica Gold Radio. हाँ जी, अभी अगला गीत आपको जो सुना रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ाना है थोड़ा बढ़ा लीजिए, और बात करेंगे एक ऐसी लेडी के बारे में जो अपनी $400,000 की जो बेंटली है उसमें बैठ के जाती है अपने काम पे.
0: ये है Leica Gold, The Evening Show with Ashwini. Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट. Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने on Leica Gold and Leica Radio Midlands from 1 PM to 4 PM.

0: मिला लेंगे घर यहाँ एक बार, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 42 मिनट्स पास्ट 7। आप लोग डांस मस्ती करते हुए इस शो को एंजॉय कर रहे हैं, ऐसे मैं नहीं करी, ऐसे आप लोगों के मैसेजेस मुझे आ रहे हैं कि फुल ऑन मस्ती शुरू हो गई है। अच्छा जी, अब ज़िंदगी में जो मोटिवेशन चाहिए ना, तो इंसान कहीं से भी ले सकता है। बात करेंगे एक ऐसी महिला के बारे में, तो ये आंटी जी जो हैं, ये $400,000 की लग्जरी बेंटली से जाती हैं डिश वॉशिंग का जॉब करने के लिए। अब ये चाइना में रहने वाली जो आंटी हैं, ये घर पे बैठ के इतनी बोर हो जाती हैं, ये 60s या 70s में हैं, एक वेल्दी फैमिली को बिलोंग करती हैं, एंड रेगुलरली इनकी बेटी इनको इस हाई एंड व्हीकल में बिठा के छोड़ दी है उनकी जो ये लो पेइंग जॉब है वहाँ पे। अब इनका कहना ये है कि भाई मैं घर पे बैठे बैठे ना बहुत बोर हो गई हूँ, ऑब्वियसली पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे कुछ एंगेजमेंट चाहिए, तो इसीलिए मैं जाके डिश वॉशिंग का काम करती हूँ। नाउ द स्टोरी स्पार्क्ड वाइड स्प्रेड प्रेज ऑनलाइन विथ मेनी एडमायरिंग हर स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक एंड नथिंग दैट हर चॉइस टू वर्क वॉज ड्रिवन एंटायरली बाय अ डिजायर फॉर डेली पर्पज फिजिकल एक्टिविटी एंड सोशल कनेक्शन रादर देन फाइनेंशियल नीड। एक्चुअली ये ज़रूरी है कि एल्डरली लोग जैसे जैसे वो अपनी उम्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं, कई बार होता है कि सोशल कॉन्टैक्ट टूट जाता है। अगर आप कोई एक्टिविटी चाहते हैं जो आप करना चाहते थे ज़िंदगी में, जिस जब आपको टाइम नहीं मिला, बिजी रही लाइफ, तब नहीं कर पाए, तो वो सारी विश लिस्ट जरा निकालिए, वो डायरीज खोलिए या एक डायरी पेन लेके बैठ जाइए और अपनी जो इच्छा है वो सारी की सारी इच्छाएँ पूरी कर लीजिए ना। पहले टाइम नहीं था, घर संसार में बिजी थे, बच्चों के पीछे बिजी थी, लेकिन अब टाइम है, अपनी सारी इच्छाएँ पूरी करो। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि 100 ईयर ओल्ड जो वो आंटी जी हैं, उन्होंने पैराग्लाइडिंग करी। भाई इतनी ऊंचाई से वो कहाँ से देखो कहाँ, बंजी जंपिंग किया, पैराग्लाइडिंग करी, कुछ तो दोनों में से एक चीज़ थी। सो उन्होंने भी किया है, आप भी कर सकते हैं। कई बार हो जाता है, फिर हम सोचते बहुत हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, क्या लोग हमें तवज्जो नहीं दे रहे, देखो अब तो हम किसी काम के नहीं रहेंगे, हम पुराना फर्नीचर हो गया क्या, ऐसे पता नहीं ना जाने कितने नेगेटिव थॉट्स दे स्टार्ट प्रिवेलिंग इन योर माइंड। सो अपने आप को बिजी रखें, बिल्कुल यार दोस्तों से मिले, बाहर जाएं, सोशल लाइफ ले, एक पार्ट टाइम जो जॉब ले लीजिए, जिसकी वजह से आप एंगेज्ड रहेंगे और जो नेगेटिव ख्याल जो है ना, ख्यालों में जो हो जाता है वो नहीं होगा। Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive. This is Ashwini in for Anisa Nazir on the evening show.
1: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
2: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस,
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: विजिट travelhubworld.com।
3: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
4: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share, and we give the rest back to you as cashback.
3: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
4: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
3: Cashback Remortgages. The broker that gives you back.
5: Gold Bank London teams up for the Atif Aslam concert in association with Leica Radio Network. For you to win a 5-gram gold coin, if you've bought a group of 5 tickets or more to the concert, you could be in with a chance to win this golden prize. Just attend on the night and wait for the host to announce the ticket number or your name. If it's yours, you'll be walking away richer thanks to Gold Bank London. Atif Aslam, live at the O2, Sunday the 14th of June. T's and C's apply. Attention meat lovers of Rainer's Lane.
6: This is huge.
5: Tariq Halal is opening in Rainer's Lane on Wednesday the 17th of June. And you are all invited.
6: One day only. Spend just £1 and get up to £50 worth of top brand freebies.
5: But be quick. This golden giveaway is for the first 100 customers only.
6: Doors open at 10 a.m. sharp. 297 Rainer's Lane Pinner. HA55EH. Set your alarms, get there early and don't miss out.
5: Tariq Halal, Rainer's Lane. There is only
7: everyone. From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
8: गड़बड़ घोटाला छे, problems मोटा छे, पर बदु alright छे.
9: मैंने back to back तीन movies जोई ली थी.
8: Get ready for a full on comedy chaos with Veeraj Ghelani and Umang Vyas in the movie बदु alright छे.
9: बेहतर कलकल पाचो आवे, जैसे न पच्ची बदु alright थे जैसे.
8: In cinemas on 12th of June. For more info, visit Bakrania Media's Instagram handle.
10: ये वो लगे छे के picture चल छे.
11: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
12: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
13: Ye hai. Like a gold. Like a gold.
12: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: For £1, you'll get 127.61 Indian rupee, 373.41 Pakistani rupee, 448.56 Sri Lankan rupee, 165 Bangladeshi taka, 83.84 Afghani, 173.73 Kenyan shilling and 1.34 US dollars.
14: Leica Radio.
12: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply.
14: LEICA Gold.
12: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £101.24 per gram.
12: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
0: टिक टिक करते हुए घड़ी कह रही है, एक बार टाइम फिर से चेक करवा लो फटाफट. 8:49 इस आवर का आखिरी गीत आपको सुना रही हूँ फर्ज फिल्म से.
12: अश्विनी, ब्राइटनिंग अप योर वीकनाइट्स. दिस इज अश्विनी इन फॉर अनीसा नज़ीर ऑन द इवनिंग शो.
3: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
15: Atif Aslam live in the UK.
3: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
15: Book your tickets now at AXS.
3: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
15: Exclusive radio partner, Leica Radio.
16: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
17: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
16: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
17: गारंटेड.
16: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे. साउथ हॉल ट्रेवल.
17: फोन 02085748410.
16: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.
18: Two businesses.
3: Same town.
18: Same service.
3: One appears on page one of Google.
18: The other doesn't.
3: Guess which one gets the customer?
18: The truth is brutal.
3: The first page of Google gets the business.
18: Everyone else gets what's left.
3: So here's the real question.
18: When your customers search for what you sell, do they find you?
3: Visit HeartyHanks.com and stop letting Google choose your competitors.
18: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
19: Step into the new grand showroom of Gajul's Couture, Southall.
20: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
19: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
20: Plus beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Gajul's Couture, now open 7 days a week.
19: Gajul's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
1: Location, location, location.
21: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
21: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
21: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
21: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
1: High appreciation.
21: In Dubai.
22: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
23: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply. From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
13: The Evening Show with Ashwini. Like a
24: gold. Feel good classics all day. This is Like a Gold.
25: Star Track of the Hour, sponsored by Star Tours, Coach, Eurostar, Your Flight. Aap choose karo apna style. Baki sab Star Tours experience samhal leta hai. Visit StarTours.co.uk.

0: Welcome. This is the second hour of the evening show with Ashwini on Laika Gold Radio in London and Laika Radio in Greater Manchester. रुक जाओ दिल दीवाने. 90s वाले बच्चे खुश हो गए. I'm just in love with this movie इसलिए क्योंकि 90s वाली मैं हूँ एंड मैंने अपनी GCSE एग्जाम्स दी थी उस टाइम पे. अब मेरी उम्र कैलकुलेट करते बैठो, ठीक है? अभी हो सकता है जल्दी भी GCSE दे दी हो, है ना? लेट क्यों होगा? एनीवेज, सो हर फिल्म जो है आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई मायने रखती. जैसे DDLJ हम सारे के सारे स्कूल फ्रेंड्स एकदम साथ में देखने गए थे, नियरली 120 किड्स. बिकॉज उस समय यहाँ के जैसा थोड़ी होता है, बैक इन इंडिया में तो 60 किड्स एटलीस्ट हमारे टाइम पे हुआ करते थे भाई. सो 60 इधर 60 उधर, कुल मिला के 120 बच्चे हम लोग सब साथ में गए थे DDLJ देखने के. तो आई थिंक इसीलिए शायद एपिसोडिक मेमोरी है व्हेन इट कम्स टू DDLJ फॉर मी. सेकेंड, सारा ज़माना किशोर कुमार की आवाज़ में 1981 में ये फिल्म रिलीज हुई थी. दोनों ही बड़े ज़बरदस्त गीतों के साथ में हमने आगाज़ किया इस आवर का. सो गुड न्यूज़ अराउंड द वर्ल्ड, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता लेकिन हम करते हैं, बताएंगे आपको कुछ ही देर में. आप लोगों के लवली लवली एंड यमी यमी डिशेज़ के पिक्चर्स आप हमें भेज रहे हैं. कुछ ने कहा है कि बस शो इतना इंजॉय कर रहे हैं कि पैर थिरकना बंद नहीं होता. बिल्कुल पैर थिरकाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ड्राइविंग कर रहे हैं तो सिर्फ स्टेयरिंग पर हाथ थिरकाइए, प्लीज़ पैर मत थिरकाइए. ड्राइव सेफ, हाँ, बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप इंजॉय करें म्यूज़िक. हमें मैसेजेस भी करें लेकिन मैसेज तब करें ड्राइविंग करते समय अगर कोई ऐसा आपके पास में प्रोविज़न है कि आपकी आवाज़ आपका व्हाट्सएप रिकॉर्ड करके हमें मैसेज भेजे, तो ही हमें मैसेज भेजिएगा. अच्छा, सब मुझे पूछ रहे हैं अश्विनी कैसी हो आप. मस्तम मस्त, कैसा है नया वर्ड ना, सिर्फ मस्त नहीं बोलना है, मस्तम मस्त. मतलब मस्त के ऊपर की एक लेवल होती है मस्तम, उसके ऊपर मस्त. आप लोग ये मेरा वाला वर्ड ना यूज़ कर सकते हो, मस्तम मस्त. जाओ बिल्कुल यूज़ करो मेरी तरफ से, नो रॉयल्टी, ठीक है? उसके पैसे बाद में दे देना. नेक्स्ट ट्रैक आशा भोसले की आवाज़ में आप सभी के लिए, मीरा साया फिल्म से. फटाफट वॉल्यूम अप कर लीजिए क्योंकि ये बड़ा ही म्यूजिकल गाना है.
1: Tune in to Laika Gold, London's number one Asian retro station on the Laika Radio mobile app.
2: Jhumka gira re

0: Football Score Updates, brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
1: ग्रुप ए में मैच चल रहा है साउथ कोरिया एंड चेस रिपब्लिक के साथ. सो कोरिया ने दागे दो गोल एंड चेस ने दागा एक गोल. ग्रुप बी में कैनेडा एंड बॉस्निया के बीच मैच शुरू हो चुका है. एंड डोंट फॉरगेट, यू कैन गेट योर 15 मिनट फ्री लीगल एडवाइस विथ योर स्पॉन्सर्स रॉक लॉ इफ यू मेंशन लाइक. और पता है मैं कौन सी टीम्स को सपोर्ट कर रही हूँ? मैं सपोर्ट कर रही हूँ नॉर्वे एंड ऑस्ट्रिया को.
0: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
2: The Evening Show with Ashwini.
0: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is Ashwini, in for Anissa Nazir, on The Evening Show.
3: Gold Bank London teams up for the Atif Aslam concert in association with Leica Radio Network. For you to win a 5-gram gold coin, if you've bought a group of 5 tickets or more to the concert, you could be in with a chance to win this golden prize. Just attend on the night and wait for the host to announce the ticket number or your name. If it's yours, you'll be walking away richer thanks to Gold Bank London. Atif Aslam, live at the O2, Sunday the 14th of June. T's and C's apply.
4: Hi, hello.
5: पत्नी प्रीमियर लीग शोज एट राइसलीप अल्बर्टन ईस्ट एंड साउथ लंदन लोअर होम लेस्टर. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल दीपा ऑन 07947561947.
6: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
8: गड़बड़ घोटाला छे, प्रॉब्लम्स मोटा छे, પણ બધું ઓરાઈટ છે.
9: મે છે ને બેક ટુ બેક 3 મૂવીઝ જોઈ લીધી.
8: ગેટ રેડી ફોર અ ફુલ ઓન કોમેડી કેઓસ વિથ વિરજ ગેલાણી એન્ડ ઉમંગ વ્યાસ ઇન ધ મૂવી. બધું ઓરાઈટ છે.
9: બે ત્રણ કલાકમાં પાછો આવી જશે ને પછી બધું ઓરાઈટ થઈ જશે.
8: ઇન સિનેમાઝ ઓન 12th ઓફ જૂન. ફોર મોર ઇન્ફો વિઝિટ બકરાનિયા મીડિયાઝ ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ.
10: એવું લાગે છે કે પિક્ચર ચાલશે.
11: Tasty swag and sweet jump. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
12: Mango season has arrived. Here also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
11: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
13: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB.

0: इमोशन ऑफ द डे फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: Leica Gold.
3: Ashwini in for
0: Women's Cricket Updates, presented by Carmel Pumaka and brought to you by TW Pays. If you're overpaying on your card terminal, we'll show you the truth and cut your costs.
4: And RoboThink, where children don't just use technology, they learn to build it. RoboThink.co.uk/Leica.
5: भाई वुमेन्स क्रिकेट अपडेट के लिए आप और हम सीधे चलेंगे ग्राउंड हमारे जो क्रिकेट करेस्पोंडेंट है कमल प्रभाकर जी. कमल जी क्या चल रहा है वहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड पे.
6: गुड इवनिंग अश्विनी जी. यस आई एम एट एजबस्टन. यू नो आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच है. सो इट्स अमेजिंग द वुमेन जो पहले ओपनिंग था इट वाज सो ब्यूटीफुली डन. तो यू नो इट वाज सो नाइस इन द फर्स्ट डे ऑफ इट. सो वो अच्छा सारा हो गया. And then the game started. So England won, you know, Sri Lanka won the toss and then they elected to ball. So England ne batting ki, but kya shandar batting ki. They scored 219 runs for one wicket. It's amazing. One of the players got 100 and the other 50. So it's not strong batting kiya Europe ne, bahut shandar batting kiya. Then Sri Lanka actually fielding was good. But bowling was not that very good. You know, it was short pitch. But the atmosphere, jo hai, it is amazing atmosphere. We've got really a full house for the first game of ICC Women's T20 World Cup.
5: फैंटास्टिक कमल जी, थैंक यू. आप ऐसे ही हमें अपडेट्स देते रहिए और हमारे लिसनर्स जो हैं उन्हें वुमेन्स क्रिकेट के जो अपडेट्स हैं वो वहां से लाइव आपके लिए लेके आ रहे हैं हमारे क्रिकेट करेस्पोंडेंट कमल प्रभाकर जी. थैंक यू कमल जी.
6: Thank you so much. Take care. Have a good evening.
0: This update was brought to you by TW Pays. Visit twpays.com/Leica for a chance to win a free card terminal. T's and C's apply.
4: And RoboThink. This summer, give your child a head start in AI, robotics and coding. Places are limited. Save 20% on full week summer camp bookings with code LEICA20 at participating locations. Book now at robothink.co.uk. Terms apply.
5: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ. इट्स 8:35. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. शो का नाम द इवनिंग शो विद अश्विनी. 12th of June फ्राइडे वीकेंड ये पे हम लोग सेलिब्रेट ऑलरेडी कर रहे हैं विद फैंटास्टिक फ्राइडे. अब थोड़ी गुड न्यूज अराउंड द वर्ल्ड हम सुनते हैं. आज थोड़ी गुड न्यूज इटली के बारे में हम आपको बता दें. इटालियन टीचर नेम ग्लोबल टीचर प्राइज फाइनलिस्ट. 6,000-year-old thermal structure discovered in Tuscany. Italian hospital implants a small and smart cochlear device in 11-year-old. Italian region launches new program in sign language. Over 1.1 million hectares of Italian forest certified sustainable. देखिए फॉरेस्ट की ज़रूरत डेफिनेटली हम सभी को है. जितने पेड़ लगा सकते हैं लगाना चाहिए क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आप और हम जैसे जैसे अब सूर्य देवता अपनी धूप झलकाएंगे हमारे ऊपर समझ में तब हमें समझ में आने ही वाला है और ऑलरेडी आ चुका है क्योंकि एक झलक हमने देख ली थी. और फिर कैसे एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत पड़ सकती है ये भी हम सबको समझ में आ रहा था. एनीवेज आज रात का टेम्परेचर तो आराम से ठंडा है. कल होने वाला है 22 यानी सूर्य देवता होंगे मेहरबान. ब्यूटीफुल वेदर टुमारो यहाँ पे इन लंदन एंड ऑब्वियसली जहां जहां बारिश होती है वहां पे बेस्ट ऑफ लक जी. एंजॉय करते रहिए.
7: ये है लाइका गोल्ड.
8: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल. एवरी वीकेंड 4-7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ. सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे.
0: द इवनिंग शो विद अश्विनी.
9: लाइक लायका गोरी गुजरिया से

0: वॉट अ फैंटास्टिक ट्रैक. मोहम्मद रफी की आवाज़ में गंगा जमुना से सुनाया आपको ये गीत. 1961 में फिल्म रिलीज हुई थी. इसमें जो ढोलक बजा है ना, वो ढोलक सुन के इतना मज़ा आता है कि एक तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो बड़े बड़े यहाँ पे जो ये स्पीकर्स लगे हैं ना, उसमें एक एक इंस्ट्रूमेंट इतना सुंदर सुनाई देता है. सुंदर क्या मतलब, अच्छे से, आई डोंट नो, मैं सुंदर बहुत जगह मैं सुंदर शब्द यूज़ कर लेती, होता है ना, वी आर जस्ट यूज टू सर्टन शब्द जो हम लोग यूज़ करते रहते हैं. अब ऐसे ही सुंदर एक्ट किसी ने की है. अब इसके बाद मुझे आता है एक सवाल. तो एक भाई साहब है और ये बहुत ही एक्सक्लूसिव सुपर कार में से रास्ते पे से गए, ट्रैफिक सिग्नल पे रुके और वहाँ पे बैठे एक जो होमलेस पर्सन थे उनके हाथ में एक बैग फुल ऑफ नोटों की उनके हाथ में दे के चले गए. So, in world obsessed with luxury, this moment carried a different message. Wealth can buy the finest car, but generosity is what earns respect. The most successful people understand that money is a tool, not a trophy. तो आपके पास जितना धन दौलत है, गाड़ी बंगला है, उसका अगर आप समाज में कुछ देने से अगर नहीं कतरा रहे हैं, जो होमलेस हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उन्हें हेल्प करने से अगर आप नहीं कतरा रहे, तो definitely you are a wealthy person. Now, there's a difference between rich and wealthy. मैं उसमें अभी नहीं जाऊंगी डिटेल में, कृपया गूगल कर लीजिए what is the difference between rich and wealthy mindset. हम यहाँ mindset की बात कर रहे हैं. So, wealthy बनिए, rich बनिए, लेकिन समाज में कुछ देते हुए ज़रूर चलिए. Like an extra podcast update. हाँ जी, तो हमारा नया एपिसोड जो है आ चुका है. दिस इज एपिसोड नंबर 20, बॉलीवुड रिवाइंड, अ थ्रोबैक टू 2000 एरा. दिस इज होस्टेड बाय हमारा अपना अनुज. वाज दिस डेकेड अ परफेक्ट मिक्स ऑफ स्टार्स, सॉन्ग्स एंड रोमांस? डिड द एरा रीडिफाइन इंडियन सिनेमा फॉर इन आवर आईज? लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल है ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स.
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर. This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
3: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
3: विजिट TravelHubWorld.com.
4: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
5: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
9: Minar Jewelers. अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com. कॉल 0208-767-7627.
10: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
11: No worries, I'm having fun on Play Ojo. keep it fun with Playojo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
10: Here's your decaf oat milk, extra but not piping hot.
12: Thanks. Playtime's over. Mmm, lovely.
13: Feel the fun. Playojo.
11: 18 plus gamble aware.
1: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. On this week's Leica Extra podcast, Anuj Radia rewinds Bollywood back to the 2000s.
14: I remember seeing Cocktail.
15: Oh, that was 2012, yeah.
14: And thinking, my God, we're seeing themes that, like, I thought that was a bit, we would say in that time, that was a bit like Rogue, and it was a bit like, oh my God, like, love triangle, like, and now you look at the films being made and that's not Rogue at all.
1: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. Ashwini, brightening up your weeknights.
2: Yeah, Leica Gold.
13: Leica Gold.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: For £1, you'll get 127.55 Indian rupee, 373.26 Pakistani rupee, 447.61 Sri Lankan rupee, 164.87 Bangladeshi taka, 84.07 Afghan Afghani, 173.63 Kenyan shilling, 1.34 US dollars.
13: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
13: Leica Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £101.24 per gram.
1: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.

0: मिलानी के घर। यार देखते हैं टाइम कितना हुआ है, इट्स 8:50। आप सभी ने ट्यून इन किया द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। फैंटास्टिक फ्राइडे मना रहे हैं आप और हम, और फैंटास्टिक फ्राइडे में आप सभी को हमने सुना दिया था ये फैंटास्टिक ट्रैक। अब क्यों फैंटास्टिक फैंटास्टिक क्या करें, मतलब अब कुछ तो हमें चाहिए ना डेफिनेटली व्हेन इट कम्स टू फ्राइडे। तो कुछ मतलब डांस वाले जो गीत होते हैं, संगीत होते हैं, सो इसीलिए हम आप लोगों को सुनाते रहते हैं ऐसे गीत। नेक्स्ट आवर की तरफ आप और हम धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। एंड वीकेंड पे आप लोगों के कोई स्पेशल प्लान्स हैं, कुछ जा रहे हो लंदन सिटी में भी? अभी जैसे जैसे वेदर अच्छा होता है वैसे कई ओपन मार्केट इवेंट्स होते हैं, ओपन थिएटर्स होते हैं, बड़े सारे प्लेस किए जाते हैं। देखिए हम तो शेक्सपियर जी के सिटी में हैं, तो यहाँ पे थिएटर में काफ़ी कुछ एक्टिवली होते रहता है, गीत संगीत से रिलेटेड भी इवेंट्स हर जगह होते रहते हैं। तो जैसे जैसे धूप निकलेगी ज़रा ज़रूर बाहर जाइएगा, एंड कभी कभी ना एक्सप्लोर करिए अकेले भी, हर टाइम पे ज़रूरी नहीं कि कोई आपके साथ हो। विथ मी आई है, आई डोंट नो एम आई चेंजिंग और क्या हो रहा है मुझे पता नहीं, बट देर आर सर्टन प्लेसेज वे आई एक्चुअली लव टू गो अलोन, और मेरी जान पहचान वाला मुझे कोई नहीं चाहिए बिकॉज मेरा फोकस कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होता है। व्हेन आई गो टू जिम मुझे अच्छा लगता है कि मैं अकेले जाऊँ, मेरे कोई जान पहचान की ना रहे वहाँ पे, क्योंकि फिर गपशप होती है और डिस्ट्रैक्शन होता है। आप अपने जिस गोल से जाते हो, जो विजन लेके जाते हो कि आज इतना वर्कआउट करना है ये करना है, तो वो होता नहीं है फिर। सो जनरली जहाँ जहाँ मुझे कुछ सीखना होता है, जहाँ जहाँ मेरी ग्रोथ होती है, वहाँ पे आई अवॉइड टेकिंग माई फ्रेंड्स और गोइंग विद पीपल हुम आई नो।
1: Reminisce those classics on Leica Gold. This is Ashwini, in for Anissa Nazir, on The Evening Show. Leica Gold.
2: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410, and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
3: No more worries for me or you.
4: Southall Travel, at all protected.
5: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
6: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
5: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
6: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
5: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear. All in one destination.
7: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to try. Visit heraldplastic.com.
8: Attention meat lovers of Rainer's Lane.
9: This is huge.
8: Thadi Kalal is opening in Rainer's Lane on Wednesday the 17th of June. And you are all invited.
9: One day only. Spend just £1 and get up to £50 worth of top brand freebies.
8: But be quick. This golden giveaway is for the first 100 customers only.
9: Doors open at 10 a.m. sharp. 297 Rainer's Lane Pinner. HA5 5EH. Set your alarms, get there early and don't miss out.
8: Thadi Kalal, Rainer's Lane. There is only one.
10: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
11: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
10: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
11: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
10: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
11: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
10: Offer valid from the
9: the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
12: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસમાં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે.
13: BAPS મંદિરનો ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર.
12: યુરોપના 3-9 દિવસના ટૂર્સ,
13: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
12: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ.
13: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે.
12: કોલ 02089002323 ધ સ્ટાર ટૂર્સ.
13: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન.
14: અપને બિઝનેસ કો UK કે લાર્જેસ્ટ એશિયન કમર્શિયલ રેડિયો નેટવર્ક પર એડવર્ટાઇઝ કરને કે લિયે કોલ કરે. લાઇક આર રેડિયો સેલ્સ ઓન 02071321458 या ईमेल करें sales@lykamedia.co.uk.
15: The Evening Show with Ashwini.
16: Classic Throwback is brought to you by Leica Gold 2. Bollywood classics non-stop on the new Leica Gold 2. Available at leicaradio.com, via Alexa, or by using our Leica Radio mobile app.

0: Swinney, brightening up your weeknights.
1: वेलकम वेलकम, दिस इज द थर्ड आवर ऑफ द इवनिंग शो विद अश्विनी। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। ढोल बजा दिया आते से ही पहले, थर्ड आवर में जैसे ही आप और हम आ गए तो पहले तो उदित नारायण जी और कविता कृष्णमूर्ति ने हमारा स्वागत किया ढोल बजा के, उसके बाद में किशोर कुमार और लता मंगेशकर, इनके बीच में चलते रहा इस चीज़ को लेके फंसाना कि दरिया में अगर चाबी चली गई तो क्या होने वाला है। ओके, तो थर्ड आवर में जनरली हम लोग आपको आइदर गज़ल सुनाते हैं या सुनाते हैं कव्वाली, तो आपके हिसाब से आज मैं क्या सुनाने वाली, राइट? एंड इट्स वीकेंड, यस, तो दो दिन की छुट्टी आपकी और मेरी कट्टी है ना, तो सैटरडे संडे कुछ स्पेशल प्लान्स बने हैं, हमारे क्या प्लान्स बने हैं, ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी बिजी फॉर मी एज वेल। एंड मंडे अगर सब ठीक रहा तो हम मिलेंगे, दिस इज़ वॉट मोस्ट ऑफ आवर प्रेजेंटर्स ऑलवेज से, एंड सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा, सब पॉजिटिव होगा, क्योंकि ग्रैटिट्यूड में जब हम रहते हैं तो सब अच्छा होता ही है। आप भी अपना ख्याल रखते हुए हमें मैसेजेस करते हैं और पूरा पूरा साथ देते हैं हर एक गीत पे, जब आप लोगों की तरफ से कमेंट्स आते हैं और कितना आप इंजॉय कर रहे हैं, ये जब वो छोटे छोटे इमोजीज आप यूज़ करते हैं ना, बड़ा मज़ा आते रहता है। हम लोग भी स्टूडियो में यहाँ पे काफ़ी गपशप चलते रहती है, जैसे मेरी पड़ोसन है रेडियो वाली, उनका शो चल रहा है लाइका रेडियो पे, एंड जनरली हम लोग शुरू करते हैं सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक, तो हमारे सारे प्रेजेंटर्स कुछ ना कुछ गुफ्तगु चलते रहती है हमारे ग्रुप पे भी और मैसेजेस आते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है, सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं। तो सो हाँ जी, ऐसे ही आई एम श्योर आप भी अपनों से मिलके बहुत मस्ती मजा गपशप इंटरेक्शन करते ही होंगे।
0: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: Your £1 in British sterling could get you up to 127.20 Indian rupees. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: The Evening Show with Ashwini.

0: is Leica Gold.
1: Leica Radio.
0: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
2: ग्रुप ए का मैच साउथ कोरिया और चेस रिपब्लिक के बीच हुआ, जिसमें साउथ कोरिया ने 2 गोल बनाए एंड चेस ने 1। एंड ग्रुप बी में कनाडा और बोस्निया के बीच मैच चल रहा है, बोस्निया ने 1 गोल दागा है। एंड डोंट फॉरगेट टू गेट योर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद आवर स्पॉन्सर्स रॉक लॉ इफ यू मेंशन लाइका।
0: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
2: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम क्या हुआ। इट्स 24 मिनट्स पास्ट 9। आप सभी ने ट्यून इन किया है द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। धीरे धीरे आप लोगों के गुड नाइट के मैसेजेस शुरू हो रहे हैं। एंड जो मैंने अभी गाना सुनाया था, जाने दो मुझे जाना है, कहीं ना कहीं वो इशारा इसी की तरफ था कि बस कुछ देर बाद मैंने स्टूडियो को और आपको कहना है टाटा बाय बाय, लेकिन फिलहाल टाइम है। तो गज़ल या कव्वाली क्या आ रहा है ज़रा सोचिए और मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा, जैसे हमने कहा कि हर एक दिन सीमित होता है किसी न किसी चीज़ के लिए और सेलिब्रेशंस भी होते हैं। सो 12th ऑफ जून को मनाया जाता है नेशनल रेड रोज डे, साथ में मनाया जाता है नेशनल लविंग डे, CNA डे, नेशनल जर्की डे, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, रशिया डे, अभी नेशनल रेड रोज डे। दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग फॉर मी, क्योंकि रेड रोज़ हमारी ज़िंदगी में प्यार का वो एहसास है जो हम सामने वाले को देते हैं जब हम एक रेड रोज़ का बुके किसी को प्रेजेंट करते हैं। तो रेड रोज़ के नाम है भाई आज का दिन, और अगर आप किसी को रेड रोज़ देते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप को ये कॉन्ग्रेचुलेट करिए कि एक इतनी सुंदर रोज़ को आप रोज देखते भी होंगे और रोज किसी को देते भी होंगे। दैट रिमाइंड्स मी, मेरे यहाँ पे बैक एंड में बहुत सारे रोजेस के प्लांट्स हैं, उसमें रेड रोज भी है, मिक्स्ड जो है ना वैसे भी रोजेस आते हैं, पिंक एंड रेड कलर के रोज एक ही प्लांट में आते हैं। दैट्स सो ब्यूटीफुल है, कभी कभी कि बस यूनिक एक कलर नहीं है बट बहुत सारे कलर्स होते हैं। स्पेशली आई लव दिस सीजन जहाँ पे बहुत सारे फूल पत्तियाँ झाड़ सब सुंदर ही सुंदर लगता है इस सीजन में। आपको क्या लगता है?
0: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is Ashwini, in for Anissa Nazir, on The Evening Show.
3: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
4: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
5: Atif Aslam live in the UK.
4: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
5: Book your tickets now at AXS.
4: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
5: Exclusive radio partner, Leica Radio.
6: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
7: विजिट mantrahalidays.co.uk और कॉल 0203773633 नाउ।

0: Laika Gold. Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Laika Gold in London, the Midlands and Manchester.
1: Laika Gold.
2: This is Ashwini, in for Anissa Nazir on the evening show. Laika
3: Gold. TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
4: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
4: विजिट TravelHubWorld.com.
5: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
6: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
5: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
6: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Or visit cashbackremortgage.co.uk.
5: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you. Gold Bank London teams up for the Atif Aslam concert in association with Laika Radio Network. For you to win a 5-gram gold coin. If you've bought a group of 5 tickets or more to the concert, you could be in with a chance to win this golden prize. Just attend on the night and wait for the host to announce the ticket number or your name. If it's yours, you'll be walking away richer thanks to Gold Bank London. Atif Aslam, live at the O2, Sunday the 14th of June. T's and C's apply.
7: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands. Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
8: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
2: Laika Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
9: For £1, you'll get 127.48 Indian rupee, 372.99 Pakistani rupee, 447.38 Sri Lankan rupee, 164.76 Bangladeshi taka, 83.92 Afghan Afghani, 173.51 Kenyan shilling, 1.34 US dollars.
10: Laika Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Laika. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Laika Gold, a part of the number one Asian commercial radio network in Greater London. The Laika Group. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
9: Gold is currently trading at £101.24 per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
9: टिक-टिक करते हुए घड़ी कह रही है, एक बार फटाफट टाइम मिला लीजिए. इट्स 40 मिनट्स पास्ट 9. आप सभी ने ट्यून इन किया है Laika Gold Radio इन लंदन एंड Laika Radio इन ग्रेटर मैनचेस्टर. भाई कुछ हमारे लिसनर्स हैं, बड़े प्यारे लिसनर्स, कहते हैं फटाफट बोलने वाली अश्विनी. आई रिमेम्बर दैट. जी हाँ, हमने वैसे ही शुरुआत की थी. ओके, सो अब गजल या कव्वाली, मैं क्या सुनाने वाली, मैं सुनाने वाली हूँ गजल जगजीत सिंह की आवाज में। कल चौदहवीं की रात थी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गजल, आई लव दिस गजल। सो ये गजल है एंड आखिरी ट्रैक होगा इस आवर का, बॉय नेम इज लखन। बिल्कुल एंजॉय करिए और कल सुबह आपकी एंटरटेनमेंट के लिए आ रहे हैं हमारे दीप राजा सुबह 7 बजे से। वीकेंड क्रू हमारा रेडी है आप सबको एंटरटेन करने के लिए, तो जरूर सुनते रहिए। और साथ में गोल्ड नाइट्स ओवरनाइट सर्विस है, जबरदस्त जबरदस्त गीत हैं सारे के सारे। लाइका रेडियो 90s, लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका गोल्ड टू। हमेशा की तरह बस इतना ही कहूँगी, प्यार दो प्यार लो, प्यार जिंदगी जीने के लिए भरपूर है। सो अपने पावर का यूज ना करें, क्योंकि पावर और नफरत किसी को बर्बाद करने के लिए चाहिए और आप उनमें से है नहीं। लाइफ सुंदर है, लाइफ इज ब्यूटिफुल, इसे कॉम्प्लिकेटेड ना करें। अपने आप का खूब ख्याल रखें, वीकेंड है, धूप रहने वाली है, तो प्लीज़ बाहर जाइए, इंजॉय करिए। ग्लोबली आप जहाँ पे भी हमें सुन रहे हैं, जिसे किसी कंट्री में सुन रहे हैं, बस मुस्कुराइए, हंसते गाते मुस्कुराते रहिए और अपनी इस दोस्त का साथ दीजिएगा फिर से मंडे से। गुड नाइट।
2: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
6: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net. Ghazal.

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड।
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: 0208574 8410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
4: Atif Aslam live in the UK.
5: Oh, Julelal Kalandar, mast mast da, mast Kalandar.
3: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
4: Book your tickets now at AXS.
3: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
4: Exclusive radio partner, Laika Radio.
6: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
4: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
6: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
4: Exclusive radio partner, Laika Radio.